अभी शायद 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें 2-3 लोग ना बढ़िया बॉलीवुड गाने जो है ना वो गिटार पे प्ले कर रहे थे, और शायद न्यूयॉर्क की कोई स्ट्रीट थी है ना, तो उनके गिटार पे पता है कौन डांस कर रहा था? ह्यूमनॉइड रोबो, राइट, एक इंसान की तरह दिखने वाला रोबो, इंसान की तरह रिएक्ट करने वाला जो रोबो है ना, वो तिनक तिनक कर बढ़िया बढ़िया डांस कर रहा था यार। और उसके मूव्स थोड़े से हॉलीवुड थे, थोड़े से बॉलीवुड इंस्पायर्ड थे। मतलब आप कह दोगे कि ये तो सच में इंसान है यार, ना ना ना ना, ये मशीन नहीं है, ये इंसान की तरह ही है। बाय द वे, मैं आज ये रुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि दुनिया बदल रही है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, और बदलते बदलते हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि रोबो काम करेंगे बेहतर तरीके से करेंगे। हाँ, उन कंट्रीज के लिए ये चीजें बेस्ट है जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां आई डोंट थिंक कि ये जो ह्यूमनॉइड रोबो है ना ये उतना काम करने वाले हैं। लेकिन चाइना ने इन चीजों को प्रूव कर दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बन चुका है जहां से ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है ना वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों का हिसाब ऐसा रहा है करीबन 7,000+ यूनिट्स जो हैं इन रोबो की चाइना से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करी गई हैं। क्या बात है, यू नेवर नो, सिंगापुर में जो 3-4 जगह डिप्लॉय किए हुए हैं रोबो है ना, ट्रैफिक सिस्टम में भी दिए गए हैं, ये चीजें हमें और बढ़ी हुई नजर आए, राइट। मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.
4: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jati hain. Ek choti si baat par parents se duri, ek pyar jo kabhi keh nahi paaye, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: भाई पिछले साल जिन लोगों ने इन एग्जिबिशंस को अटेंड किया उन्होंने दीपावली के आसपास जितनी भी शादियां अटेंड करनी थी या फिर जो अपना न्यू ईयर आने तक या होली आने तक के जो त्यौहार है ना उन तक की शॉपिंग कर ली थी। और सिंगापुर आप भी इस फेस्टिव डेज का इंतजार करते हैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और बताना चाहूंगी फुल एक्साइटमेंट के साथ जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो इज बैक। अभी 16 अक्टूबर से लेकर 25th ऑफ अक्टूबर के बीच हॉल 9 फोयर 3 सिंगापुर एक्सपो आपको पहुंचना है। बिकॉज इन 10 दिनों में आपको फीलिंग आएगी कि जो भी हर तरह की लाइफस्टाइल वैरायटी है, हर तरह की शॉपिंग की जो चीजें हैं, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, हर तरह की जो वैरायटीज हैं वो आपका इंतजार कर रही है। और अगर आप लकी रहे तो आप टिकट्स जीत सकते हैं दुबई, लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क की, या फिर आपको बहुत सारे मोबाइल फोन्स भी मिल सकते हैं या क्रूज डिनर भी मिल सकता है। इवन आपके बच्चों के लिए रंगोली कंपटीशन, कैरम कंपटीशन, चेस कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, डांडिया, जैक कम्युनिटी अवार्ड्स, क्या कुछ नहीं है। इवन आप कहेंगे कि कैशबैक ऑफर्स, तो वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। डेली गिफ्ट्स भी आप जीत सकते हैं। सो 16th to 25th of October के बीच आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: टक टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, कोई ना कोई मूवी में कोई पहली बार आया और उसने लोगों को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी और दसवीं बार इतना फ्रीक्वेंटली नजर आया कि हमें लगा कि वाओ, इसके तो अच्छे दिन आ गए हैं यार। हाँ, तो अच्छे दिन बाद में आते, मेहनत पहले निकल कर आती है, राइट? सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर आपको बताना चाहेगी, कई बार डायरेक्टर्स ने ना इन रिस्की सिचुएशंस में अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, नए चेहरे वो इंडस्ट्री के लिए लेकर आए हैं। और लव रंजन जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने प्यार का पंचनामा या सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी मूवीज में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट दिया, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया, वो एक बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हाँ जी, इस बार वो एक मूवी का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं जिसका नाम है पहला प्यार दूसरी बार, और इसका ट्रेलर वगैरह भी आउट हो चुका है। लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें जितने भी एक्टर्स आप देखेंगे, मतलब स्पर्श, अलीशा, कुणाल, साक्षी, तुषार, सरगुन, ये सारे नाम जो है एकदम नए हैं, इन्होंने आज तक किसी मूवी में काम नहीं किया है। इतने सारे चेहरे ये एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देखो वही होता है, सिचुएशन आर या पार हो जाती है। आप भी तो यार कितने सारे लाइफ के डिसीजंस पहली बार लेते हैं, तो कई बार अच्छे निकल जाते हैं और कई बार आ चाई फिस ऐसा हो जाता है। तो अब इनके साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर क्या होता है, बहुत सारी बातें, एंटरटेनमेंट वक्त ही बताता है, लेकिन दिन भर और मंडे टू संडे मैं आज नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

0: don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.

0: से देखोगे कि वो लोग तो किनारे हो गए, कोई भी आपके साथ नहीं है। हाँ, तो ये एक हार्श रियलिटी है दुनिया की, इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेस्ट है मेरी जान। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखो, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री एकदम लॉस की कगार पे थी ना, तो कोई भी उनका साथ देने के लिए नहीं आया, ना ना ना ना ना ना। लेकिन अब धीरे धीरे से जब सिचुएशन बेटर हो रही है, मतलब कोविड के बाद इतने साल निकल गए, चीजें रिकवर हो रही है, पब्लिक जो है वो थिएटर्स की चौखट में पहुंचने के लिए वापस तैयार हो रही है, तो भाई जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन्होंने भी सोच लिया है कि मौके का फायदा उठा लेते हैं। भाई आखिरकार वो भी तो इंसान है और क्या। तो भाई सुनने में आ रहा है कि मुंबई में होने वाले जितने भी कॉन्सर्ट टिकट्स है ना, वो आने वाले वक्त में और ज्यादा महंगे हो सकते हैं, बिकॉज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना, उन्होंने 570% एंटरटेनमेंट टैक्स हाइक कर दिया है। मतलब जो भी टैक्सेशन चल रहा था अभी तक बहुत नॉमिनल सा, उस पे 570% प्लस कर दिया है। कैन यू इमेजिन चीजें कितनी ऊपर तक चली गई हैं। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हैवी पेमेंट करती है तो वो कमाती कहाँ से है, आपके और मेरे जैसे आम लोगों से? खुद से थोड़ी ना देंगे। तो देखते हैं ये जो बातचीत है वो कहाँ तक जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपुर आपके साथ।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: है गरबा शर्बा की प्रैक्टिस सिर्फ इंटरनेट या रील्स देखते देखते ही करते रह जाओगे, एक्चुअल ऑथेंटिक परफॉर्मेंस भी तो कहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए, जिनको टिपिकली गरबा खेलना है, माता रानी को याद करना है, आराधना करना है कुल मिलाकर, सो सिंगापुर गुजराती कम्युनिटी हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि सेलिब्रेशन। 16th, 17th, or 18th अक्टूबर को आपको पहुंचना है लगुना बॉलरूम, दूसरे थाने लगुना, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन सिंगापुर। यहाँ के टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो आप क्विकली बुक करो sgs.org.sg/navratri2026 लॉग ऑन करके। अच्छा सुनिए, सिर्फ नवरात्रि की चनिया चोली, नवरात्रि के डांस मूव से काम नहीं चलेगा। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ जिसका आपको सही जवाब देना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो कि नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए नंबर वन पर आती है, जहां पर एकदम ऑथेंटिक गरबा खेला जाता है। क्विकली उस स्टेट का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9151896 पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं आरजे अनुपम रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusat Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba, Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: सोचो सोचो अगर आप 90s की मूवीज उठाकर देखोगे तो कितनी सारी बेस्ट मूवीज में आपको करिश्मा कपूर रवीना टंडन ही नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाय उस जमाने में इनके अलावा कोई एक्टर्स नहीं हुआ करते थे क्या। हा? अब आप आज के टाइम की मूवीज देख लो, अब इतने ऑप्शंस हो गए कि आप जैसी मूवी चेंज करोगे आपको कोई और मिल जाएगा, फिर तीसरे में कोई और मिल जाएगा, चौथे में कोई और मिल जाएगा। रेयरली ही बहुत ऐसे एक्टर्स हैं अब बच्चे इंडस्ट्री में जो हर तरह की मूवीज में नजर आ रहे हैं, वो चाहे मेन किरदार हो वो चाहे साइड किरदार हो, बिकॉज ऑप्शंस हो गए यार। इन चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया जाए उतना बेस्ट है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज ये नुपुर आपको बताना चाहेगी, यही बात का कन्फेशन रवीना टंडन ने भी किया है। एक रियलिटी शोज के दौरान उन्होंने बताया कि शायद उस जमाने में 90s में सिर्फ मैं यानी रवीना और लोलो यानी कि करिश्मा ही थे जो कि 24 घंटे में 36 घंटे काम करते थे। मतलब एक ही दिन में मल्टीपल मूवीज के शॉट देकर आना, मल्टीपल प्रोडक्शन हाउस पहुंचना, मल्टीपल मेकअप्स करना और मल्टीपल डायलॉग डिलीवरी देना, ऐसा करने वाले एक्ट्रेसेस में ये दोनों थे। क्या बात है, वो जमाना अब जा चुका है, लेकिन इस नए जमाने में क्या चल रहा है बताऊंगी मैं, यानी आपकी आरजे नुपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
3: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th to 25th September। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पंपकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration. ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: देखो, आपको उतना ही सच बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को हर्ट ना हो, पर हाँ, आपको उतना सच भी बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कम से कम सच्चाई का तो पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। हाँ, या फिर आपको उतना ही सच बोलना चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, लेट मी नो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल एक्टर्स ना एक ऑप्शन ये चूज कर रहे हैं कि वो इतना सच बोल देते हैं, इतना सच बोल देते हैं कि वो हेडलाइन का पार्ट बन जाते हैं और लोग उनसे बड़े खुश हो जाते हैं कि यार क्या बोली है ये, अरे मतलब मजा ही आ गया, अरे और क्या बोली है ये। हाँ, सो अगर हम एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर प्रीति जिंटा की बात करें, जिनका एक पांव क्रिकेट में भी रहता है, तो इन्होंने बोल दिया है कि आजकल कोई फायदा नहीं है मूवी बनाने का। क्यों? क्योंकि मूवी देखने के लिए जो अपनी व्यूअरशिप है वो मिलेगी कहाँ से, बिकॉज ऑडियंस जो है वो थिएटर्स जाना ही नहीं चाहती है। एक टाइम ऐसा था जब लोग देखना चाहते थे, बार बार देखना चाहते थे, रिपीट पे एक मूवी चले जाते थे, लेकिन अब वो ऑडियंस ना रही। सबका जो पेशेंस लेवल है वो भी जा चुका है। अब इस बात में सच्चाई तो है, लेकिन आजकल कोई मानना कहाँ चाहता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी बहुत सारी बातें बताना चाहूंगी, लेकिन आपको माननी जरूर है कि मैं आने वाली हूँ थोड़ी सी देर में गाने के उस पार। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
3: ना दे दिल पर देती मुंह तन्ने तजारूना।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक ऑफिस, टॉक्सिक सोशल मीडिया लाइफ और टॉक्सिक फिल्म इंडस्ट्री, ये सभी टॉपिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है यार। मतलब इन सब में ना एक अलग लेवल की आपको टॉक्सिक की स्मेल आएगी, आपको लगेगा कि अरे हाँ, मतलब किसी एक जगह जो है ना वो चीजों को लेकर कंपेरिजन नहीं चलता है, सब तरफ कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक अलग लेवल पे चल रहा है। मैं आज अनुपर मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो इतना बढ़ चुका है कि डायरेक्टर्स जब किसी एक्ट्रेस को चूज करते हैं अपनी मूवी में दिखाने के लिए, तो डायरेक्टर्स की जो रियल लाइफ पार्टनर है यानी जो उनकी वाइफ्स है, वो कई बार एक्ट्रेसेस को ना पसंद करती हैं और कहती हैं कि इसको हटा दो, इसको हटाते हो कि नहीं हटाते हो, वरना मेरी तुमसे लड़ाई हो जाएगी। ये भी ईगो क्लैश होता है ग्लैम इंडस्ट्री में। ओके, सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपको बताना चाहेगी कि तापसी पानू, जो हमेशा बहुत ही ज्यादा ब्लंट एंड सच बोलकर चली जाती हैं, उन्होंने बताया है कि एक बार इन्हें एक मूवी से अचानक इसलिए हटा दिया गया क्योंकि डायरेक्टर की वाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी, वो इन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए ये रीजन देकर डायरेक्टर ने हटाया। सोचो कितने लेवल का अनप्रोफेशनलिज्म इन्होंने फेस किया होगा। हाँ, तो ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी है ना, अंदर से उतनी ही खराब है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा एक्टर्स कहते हैं मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज तक की बहुत सारी बातें मैंने आपको यहीं तक बता दी, लेकिन अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी कल डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
7: जीजी।
6: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
7: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 live par. ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़ा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

नंदन नमस्कार, हेलो सिंगापुर, कैसे हैं आप? आप सभी का इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत। मैं हूँ समर लेजेंड्स वाला, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर आ गया हूँ लेजेंड्स फिर से। भाई देखिए, बॉलीवुड के सितारों के इस बेहतरीन शो में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज के लेजेंड्स आपको मिलवाने। जी आज हम जिस फनकार, जिस लेजेंड की बात करेंगे वो हिंदी सिनेमा की गायकी का एक नायाब हीरा है, हीरा जिसके चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कुराहट रहती है और हंसी के साथ जब गालों पर डिंपल पड़ते हैं तो आए हाय क्या कहिए, वो पल भर में करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। दिल दिमाग को सुकून देने वाली जिनकी आवाज है, वो आवाज सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती है। तो सिंगापुर आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक, शांतनु मुखर्जी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं

0: था।
1: जी हाँ दोस्तों, इनका सिर्फ नाम ही शान नहीं है बल्कि ये गाते भी शान से हैं और जीते भी शान से हैं। तो सिंगापुर अभी तो शो की शुरुआत हुई है, इसलिए पहले आपको सुनाते हैं इन्हीं के गाए हुए जबरदस्त गाने, आप भी झूम जाएंगे जिन्हें सुनकर। और मिलते हैं इन गानों के म्यूजिकल ब्रेक पर। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, ये है रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, और मैं हूँ समर। लेजेंड्स फिर से पर आज हम सिंगर लिरिसिस्ट शांतनु मुखर्जी यानी शान की बातें कर रहे हैं। ये बेसिकली हैं बंगाली, लेकिन इनका जन्म हुआ मुंबई में 30 सितंबर 1972 यानी 1972 की इनकी पैदाइश है। म्यूजिक कंपोजर मानस मुखर्जी इनके पिताजी, यानी इनके पिताजी भी म्यूजिक कंपोजर थे, तो म्यूजिक की समझ बचपन से ही इन्हें रहने लगी थी। और शान घर पर म्यूजिक यानी संगीत का माहौल देखकर बड़े हो रहे थे। बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स इनके घर आया करते थे। अच्छा, इनकी बड़ी बहन है, शायद आप लोग जानते होंगे, सागरिका उनका नाम है, वो भी कमाल की सिंगर हैं। और जब ये 5 साल के थे तब इनकी पूरी फैमिली ने एक एल्बम में काम किया था। भाई पापा जी ने तो दे दिया म्यूजिक और इन्होंने उसमें गाया गाना। और फिर साहब उसके बाद तो 6 साल की उम्र से ही एडवर्टीजमेंट्स में गाने लग गए, जिंगल्स गाने लग गए। फिर अपनी बड़ी बहन के साथ इन्होंने एक एल्बम में काम किया और वो एल्बम बहुत कमाल का हिट रहा। उसमें 2 गाने इन दोनों ने साथ गाए थे और इस एल्बम का नाम था नौजवान।

इसके साथ साथ वो जिंगल्स तो गा ही रहे थे। इन्होंने फिर आर डी बर्मन साहब के गाने रूप तेरा मस्ताना के रिमिक्स एल्बम में भी गाना गाया। यानी सिंगिंग शुरू से ही चल पड़ी थी और साथ ही पढ़ाई तो चली रही थी। लेकिन लेकिन लेकिन अभी फिल्मों में एज अ प्लेबैक सिंगर इनकी एंट्री नहीं हुई थी। तो अब भाई उसकी बात करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए उन्हीं के बेहतरीन बहुत ही मीठे मीठे गाने। शान स्पेशल लेजेंड्स फिर से पर आप हैं समर के साथ। लौटूंगा इन गानों के बाद।

0: Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव है ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं हूँ समर लेजेंड्स वाला और आज हम अपने शो लेजेंड्स फिर से में बात कर रहे हैं शान की और मैं भी बड़े शान से आपसे कहता हूँ कि आपको ये शो कैसा लगता है आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें जरूर बताएं और शान के कौन से गाने आपको सुने आज के हमारे शो में वो भी चाहें तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या यहाँ कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं हम वो जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको जब शान जवान हो गए थे जी 17 साल के थे ये तब इन्होंने पहली बार विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा के गाने में सिर्फ एक लाइन गाई थी सिर्फ एक लाइन।
4: ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी।
3: वेल इसके बाद 10 साल तक ये एल्बम्स बनाते रहे और गाते रहे साहब एल्बम्स हिट भी हो रहे थे ऐसी बात नहीं है लेकिन फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में अभी तक पहचान क्या कहूँ एंट्री ही नहीं हो पा रही थी इनकी। अब साहब ये इंतजार भी खत्म हुआ 1999 में जब इन्होंने पहली बार गाना गाया ये मौका इन्हें दिया फिल्म प्यार में कभी कभी ने। इस फिल्म में दो गाने शान ने गाए और दोनों के दोनों जबरदस्त हिट हो गए साहब। संजय सूरी डीनू मोरिया और राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना इस फिल्म की स्टार कास्ट में शुमार थी और वो गाना जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जो इन्होंने पहली बार गाया वो था मुस मुस हासी देव मलाई लाई और वो पहली बार जब हम मिले शान को इन गानों ने एक खास पहचान दे दी साहब पहली फिल्म में हिट हो गए।

तो भैया अभी तो शान का करियर शुरू हुआ है, करियर बहुत लंबा है, तो उसकी बात हम बड़े आराम से करेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है सिंगापुर। तो सुनिए आप फिलहाल ये गाने, गुनगुना लीजिए और झूम कर वापस लौट आएगा, क्योंकि यह रेडियो मसी 24/7 लाइव और शान के इतने बेहतरीन गानों के साथ मैं हूँ समर।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: बॉलीवुड सितारों से सजा ये शो लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और मैं आपके साथ समर एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं शान की। हमने अब तक बात की कि 1999 में शान का करियर शुरू हो गया फिल्म प्यार में कभी कभी से, और क्योंकि अब तक काफी सारे एल्बम्स वो कर चुके थे और पहली फिल्म के गाने भी हिट हो चुके थे, तो गानों के ऑफर अब उन्हें आने लग गए। सन 2000 में उन्होंने फिल्म राजू चाचा में गाना गाया। हालांकि ये गाना पहले कुमार सानू गाने वाले थे, फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे जतिन ललित, लेकिन जब किसी वजह से कुमार सानू ने ये गाना नहीं गा पाए यूं कहूंगा मैं, तो म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित ने शान को रात को 1 बजे कॉल किया, शान भाई एक गाना है और वो कल ही रिकॉर्ड होगा, तो क्या आप इसे गा सकते हैं? तो शान ने तुरंत हाँ कर दिया और दूसरे दिन पहुंच गए साहब स्टूडियो। शान काफी दिनों से जतिन ललित के पीछे पड़े हुए थे, उनके साथ काम भी करना चाहते थे। तो सिंगापुर जतिन ललित हिंदी सिनेमा के जाने माने बहुत ही शानदार म्यूजिक कंपोजर हैं, आप जानते हैं। तो साहब शान ने फिर इस फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया और एक बार फिर ये गाना हिट नहीं हुआ बल्कि सुपर हिट हो गया।

तो ऐसे ही सुपर हिट गानों का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इन गानों के बाद आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा, इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। आज हम शांतनु मुखर्जी उर्फ शान की बात कर रहे हैं, बड़े शान से सिंगापुर के एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो पर। यह भी शान की बात है जिसे आप सुन रहे हैं बड़े शान से।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

वेलकम बैक, सुस्वागत हम एक बार फिर से आपका इस्तकबाल रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। महफिल है लेजेंड्स फिर से और मैं हूं समर आपके साथ। हाजिर हूं एक बार फिर से। हम आज बात कर रहे हैं सिंगर लिरिसिस्ट शान की। इनके करियर की सन 2000 तक की कहानी हमने आपको सुनाई है, अब सन 2001 में चलते हैं। भाई इस साल शान ने करीब 16 फिल्मों में गाने गाए और करीब करीब हर फिल्म के एक गाने ने तो धूम मचा ही डाली। हाँ सच कह रहा हूँ, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या गाया उन्होंने, आप भी जान जाएंगे और मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत का गाना अपनी यादों को भूल ना जाना, क्या कमाल का गाना था।

0: ये गाना आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ था और शान ने पहली बार बख्शी साहब के लिखे हुए गाने को गाया था। और ये गाना गाने के बाद शान ने कहा था कि आज मुझे लगा कि मैं हिंदी फिल्मों में गाना गा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों में गानों का मतलब ही आनंद बख्शी होता है। इसके बाद मुझे याद आ रही है फिल्म दिल चाहता। अरे भैया उसका तो क्या जिक्र करें, इसमें दो गाने उन्होंने गाए और दोनों ही कमाल के थे। एक तो वही कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, भाई क्या गाना था, तब भी हिट था और आज भी सुनेंगे तो नाचने का मन करता है। और दूसरा भाई वो मेरा तो फेवरेट है और आप में से भी बहुतों का होगा, जिसे ढूंढता मैं हर कहीं, वो लड़की है कहाँ ये वाला।
1: सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ।
0: एक और गाना इसी साल खूब हिट हुआ शान का और फिल्म थी वो अशोका, जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर थे। तो शाहरुख खान साहब के लिए उन्होंने गाया और कांची कांच की गुड़िया। तो साहब इस तरह से 16 फिल्मों में गाने गाए उन्होंने इस साल, तो आप समझ सकते हैं कि शान को कितना पसंद किया जा रहा था। और अब जब मैं इतने अच्छे अच्छे गानों का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि आप भी इन्हें सुनना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक और ले लेते हैं। हाँ? भाई ये कहानी गानों के बिना अधूरी है, सही कहा ना जानी। तो लगाओ लगाओ गाने लगाओ मिलते हैं आपसे।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे, ट्यून इन टू
3: रात।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: दोनों वाह है फैला कर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सिंगापुर, मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। आज हम शान की बात कर रहे हैं, शानदार लेजेंड्स में, मतलब हमारे शो का तो नाम है लेजेंड्स फिर से। अच्छा, उनकी फिल्मों की बातें हो रही हैं तो अब आइए उनकी पर्सनल लाइफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट होगा ना, आइए थोड़ा दिल आपका तोड़ ही लेते हैं हम। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन टूटेगा जब मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा। राधिका मुखर्जी, नाम सुना है आपने जी? राधिका मुखर्जी इनकी वाइफ है। राधिका बेसिकली पंजाबी हैं और ये खुद बंगाली हैं, तो नाम से ये पता चल जाता है कि इनकी लव मैरिज हुई है साहब। लेकिन इनकी शादी और इनकी मुलाकात ये बड़ी इंटरेस्टिंग रही साहब। इनकी पहली मुलाकात एक क्लब में हुई थी, जहाँ इस क्लब में शांत तो हमेशा ही जाया करते थे। एक दिन राधिका अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, तो साहब यहाँ इन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा। और जब एक बार राधिका से पूछा गया कि आपको शान में क्या अच्छा लगा, उनकी सीरत या आवाज, तो राधिका ने कहा कि उन्हें शान की स्माइल बहुत अच्छी लगी। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, शान की स्माइल पर हर कोई लड़की फिदा हो सकती है। आज भी अभी भी सुन रही होंगी, वो भी उनको याद कर रही होंगी इस वक्त। अच्छा, इस दौरान शान फिल्मों में तो नए नए आए ही थे, तो एक बार राधिका और उनकी दादी टीवी देख रहे थे साहब। अभी राधिका के घर की कहानियां, और आप देखिए उस दिन टीवी पर किसी प्रोग्राम में शान आ रहे थे, और उन दिनों में शान ने लंबे बाल किए हुए थे। और कोइंसिडेंटली उसी दिन राधिका ने एक नई हेयर स्टाइल ली थी जिसमें उन्होंने छोटे बाल कटवा लिए थे। उनकी दादी शान को देखकर बोलती हैं, देखो कैसा जमाना आ गया है, लड़के तो बड़े बड़े बाल रख रहे हैं और ये लड़की छोटे बाल रख रही है। तो राधिका ने तपाक से तभी बोला था, बस दादी अब आप ज्यादा डांटोगी ना तो मैं इसी लंबे बाल वाले से शादी कर लूंगी। तो साहब ये बात उनकी सच हो गई और उनकी शादी हुई और एक बहुत ही हंसता खेलता जीवन वो दोनों बिता रहे हैं। तो इस हंसते खेलते जीवन के नाम पर एक ब्रेक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। और इस ब्रेक में क्या होगा भाई, गाना धूम मस्ती और क्या, रेडियो मस्ती पर यही तो होता है। तो आइए एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मेरा नाम है समर, ये गाने आपके नाम पर।

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। मैं हूँ समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ लेजेंड्स। फिर से आज हम सिंगर शान की फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं और ये कहानी बढ़ते बढ़ते अब सन 2002 तक आ पहुंची है साहब। नए नए सिंगर थे साहब इंडस्ट्री में, महज 3 ही साल हुए थे ने आए हुए, तो डिमांड में ये थे और हर साल लगभग 15 फिल्मों में ये गाने गा रहे थे। और इस साल दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का एक गाना तो बड़ा कमाल का था, छाया है जो दिल पे। और फिर 2003 में इन्होंने सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में गाया, जिसका म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया था। इसमें शान ने सिर्फ एक गाना गाया था और वो इतना बड़ा हिट हुआ। सलमान खान के गानों की अगर लिस्ट देखेंगे आप कभी भी, तो इस गाने का जिक्र जरूर आएगा।

और साहब इसी साल आई वो फिल्म जिसने मुझे इनका दीवाना बना दिया पर्सनली, वो फिल्म थी झंकार बीट्स। और इस फिल्म के म्यूजिक ने तो इस साल बहुत धमाल मचाया, बहुत नाम कमाया। न सिर्फ सिंगर शान ने बल्कि म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर ने भी। हर गाना सुपर हिट था।

क्या हुआ था ये सब जानने के लिए लौट कर जरूर आएगा। समर आपका इंतजार करेगा यही। ये है रेडियो मसी, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से ये है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं हूँ समर समर लेजेंड्स वाला। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि शान ने पहली बार वाइफ राधिका को कौन सा गाना गाकर सुनाया था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों सुनाऊं भाई, आए प्यार करने वाले दो लोगों को आपस में सुनाने देते, मतलब शान को ये मौका देते। तो आइए शान की जुबानी सुन लेते।

वेल, मुझे लगता है कि गाना जब गाया होगा शान ने तो मना नहीं कर पाई होंगी राधिका। खैर, जब डेट पर गए तो शान के पास महज 300 रुपए थे। तो अब शान सोच में पड़ गए कि यार राधिका ने कुछ ज्यादा मंगवा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी उलझन में थे साहब ये। पहुंच गए रेस्टोरेंट और वहां शान ने बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बोल दिया, देखो राधिका, मेरे पास सिर्फ 300 रुपए है, तो जो कुछ भी मंगाना हो खाने पीने के लिए वो इतने में ही मंगा लेना, इससे ज्यादा है नहीं मेरे पास। तो मतलब दिल के एकदम साफ, कुछ लाग लपेट नहीं, कुछ छुपाते नहीं है, चीजों को एकदम साफ रख देते हैं और वो उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से भी नजर आता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी है ये। अच्छा, ये किससे उनके चलते रहे और इसके बाद मैं, चलिए अब उनके करियर की बात कर लेता हूँ। 2004 में इन्होंने 30 फिल्मों में गाने गाए साहब, मतलब अब इनकी डिमांड डबल हो गई थी पिछले साल से। हर साल नंबर ऑफ सॉन्ग्स बढ़ते जा रहे थे। इस साल एक गाना बड़ा कमाल का आया इनका, जो छोटे बच्चों में बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि ये गाना ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया था। और ऋतिक एक ऐसे एक्टर थे उस दौर में जो बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस थे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने सुपर हीरो टाइप की फिल्में की थी, क्रिश की थी और उससे पहले वो की थी कोई मिल गया की थी। तो इस तरह से साहब ऋतिक छोटे बच्चों के हीरो थे, गाना तो हिट होना ही था। अच्छा, ये गाना इन दोनों फिल्मों से नहीं था, ये था लक्ष्य का गाना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ।

जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा और इसी के साथ इसी साल एक और गाना हिट हुआ शान साहब का, जो फिल्म हम तुम से था। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं।

Well, ये बेहतरीन गाने और इनका जब जिक्र होता है तो मेरा मन करता है कि कोई तो हम भी सुन लें भाई, और आपको भी सुनवा दें। तो आइए इस ब्रेक में कुछ और शान के गाए गाने सुनते हैं। रेडियो मसी 24/7 लाइव है ये। मैं लौटूंगा उन्हीं की कहानी को आगे लेकर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
2: GG Mart, your personal grocer.

रेडियो मस्ती सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 जहां पर समर कर रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत लेजेंड्स फिर से मैं और आज हम शान की बातें कर रहे हैं और शान से कर रहे हैं जी सिंगर शान की मैं बात कर रहा हूँ शांतनु मुखर्जी की। अच्छा उन्होंने गाने लिखे भी हैं साहब जी जी जी। एक गाना शान का बहुत ही फेमस हुआ था तन्हा दिल, ये एल्बम था जो उन्होंने निकाला और ये गाना शान ने खुद लिखा है अपने दोस्तों की याद में। भाई हुआ यूं कि जब ये सिंगर बन गए हिट हो गए गानों में बिजी हो गए तब इन्हें अपने दोस्त बहुत याद आते थे जिनके साथ इन्होंने बड़े मस्ती के पल बिताए थे। तो ये एल्बम और ये खास तौर से गाना उन्हीं दोस्तों की याद

0: बचपन का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे शेयर कर लेता हूँ। शान के पिता खुद एक म्यूजिक कंपोजर थे, मैंने आपको बताया था। तो जब भी उनके दोस्त आते थे गाने के रिहर्सल के लिए या किसी गाने के डिस्कशन के लिए, तो घर के बाहर उनके जूते चप्पल जमा हो जाते थे। तो शान और उनकी बहन सागरिका उन जूते चप्पलों को इधर उधर छुपा देते थे, और जब सब जाते थे तो वो ढूंढते रहते थे इधर उधर। और जब उनके पिता को ये पता लगता तो वो सीधे आवाज देते कि शान जाओ ढूंढ कर लाओ, जहां जहां तुमने इनके स्लीपर छुपाए। अच्छा, 2005 में हम पहुंच गए। फिर एक बार इनकी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें इन्होंने गाने गाए, और लगभग हर गाना हिट भी रहा। लेकिन मुझे याद आ रहा है इस वक्त सलाम नमस्ते से गाया हुआ माय दिल गोज हूं जी। आहा, क्या गाना है, क्या गाना। थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया इसमें, हमिंग किए। आखिरी मुलाकात अभी बाकी है सिंगापुर, और ये मुलाकात होगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं चाहता हूँ आप मुझसे जरूर मिलें। मिलेंगे ना, लौटता हूँ, मिलता हूँ।
1: संजना,
2: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ, यही तो है सब निशानियां,

0: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
1: बड़ा है।
0: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टर्का
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: नॉट लिसनिंग
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

मुलाकात के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, और इसीलिए हम लौट आए हैं सिंगापुर। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर शान की कहानी शानदार तरीके से लेजेंड्स फिर से। मैं भाई देखिए, शान इतने सालों से गा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अवार्ड भी मिले होंगे, और अवार्ड नहीं बहुत सारे अवार्ड्स मिले उन्हें। और भाई साहब जो इन्हें पहला अवार्ड मिला था वो फिल्म फना के लिए था, जिसमें इन्होंने गाया था, कमाल का गाया था आपको ही मालूम है, जतिन ललित का म्यूजिक था और बोल थे जावेद अख्तर साहब के, चांद सिफारिश जो करता हमारी, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद इन्हें दूसरा अवार्ड मिला फिल्म 3 इडियट्स के लिए, जिसमें इन्होंने गाया था बहती हवा सा था वो, आहा क्या गाना था।

0: इन दोनों गानों के लिए शान को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एक गाना है शान का जो हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था, निकम्मा किया इस दिल ने। अब साहब ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो इस गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने शान को सुनाए, तो शान ने कहा कि यार देखो आज मेरा गला खराब है, मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा। तो हिमेश ने कहा यार कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू तो बस मुझे एक बार गा के सुना दे। तो शान ने सुना दिया। इसके बाद क्या हुआ और हिमेश ने क्या कहा, ये आप खुद शान की जुबानी सुनिए।
1: ये गाने के बारे में किस्सा भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाना जब हिमेश जी का गाना था, मुझे बुलाया था गाना गाने के लिए, तो मैं सोचा कि फोन पे कह दूं कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज बैठी हुई है, तो कहेंगे यार ये अभी दो तीन क्या गाने हो गए तो ये
2: प्राइसी
1: बन रहा है। तो मैं बोला जाके समझा देता हूँ कि ऐसा है। तो सुन के बोले कि यार अच्छा लग रहा है ये टोन, इस टोन में गाते हैं, लेकिन फटी हुई आवाज है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कमा किया इस दिल ने, इस टोन में पूरा गाना गाया। और उसके बाद वो गाना भी चला और फिर जब भी मैं आओ वो टोन में, अरे यार ये क्या हो गया, मोहब्बत है रुचि सारा हूं, तो ये टोन बन गया था।
0: तो सिंगापुर ये थे आज के लेजेंड शान। आज के शो में आपने उनका किस्से सुने और उन्हीं के गाए हुए गाने भी सुने, और मुझे लगता है कि आपको ये शो अच्छा लगा होगा, और अगर लगा तो भैया समर को जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। अभी आज की कहानी यहीं तक, एक और कहानी के साथ एक और शख्सियत के साथ लौटूंगा मैं यहीं पर। तब तक ले दीजिए इजाजत और हाँ कुछ वादे करते जाइए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूं और मिलूंगा यहीं पर। तब तक ले बाय, नमस्कार, टेक केयर।

watch all night.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
4: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर जय

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पे ले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Your Musty Music Cafe is

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। और कहीं कोई जाता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
5: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: अच्छा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: आइए जी आइए. गुड इवनिंग. क्या हाल चाल. यस वेलकम नमस्ते एंड आओ व्हाट्सएप करें. व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप करें. व्हाट्सएप क्या चल रहा है भाई. रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ शाम हो चुकी है यहाँ पर. सिंगापुर टाइम बज चुके हैं 5:05 टू बी प्रिसाइज. एंड यहाँ पे शुरू हो चुका है अंतरा का समय यानी कि अब शुरू होता है मिडवीक ब्लूज. पता नहीं क्या सोच के हमने नाम रखा था. ब्लूज तो होते नहीं है क्योंकि हम वेंसडे तक पहुंचते इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वेंसडे तक पहुंच गए मजेदार. फ्राइडे तो आ ही गया. मतलब मैं कह रही हूँ ना हमें फ्राइडे की ऐसी बेचैनी बनी हुई रहती है. ऐसे बेचैनी वाला इंतजार रहता है कि बस फ्राइडे आप में हमको वेंसडे को ही थमा दो. बट वेल कोई बात नहीं हमारे माहौल ऐसा ही हो गया है. और मैंने जैसा कि पहले ही बहुत सारे लोगों को कहा था कि धीरे धीरे आज से शायद 1-2 साल और ले लो. चलो ठीक है हम ऐसा कर देंगे कि हम मंडे को ही बैठे बैठे करेंगे भाई फ्राइडे वाली फील आ रही है. कितना मस्त हो जाएगा ना ये. जस्ट इमेजिन करके देखो मंडे को फ्राइडे वाली फील आ जाए. कब हुआ है लास्ट ऐसा. नहीं फॉर गुड लॉन्ग टाइम ऐसा तो नहीं हुआ है. सो वेल कैसा गया आप सभी का दिन बताएं जरा कि क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया. हाउ बिजी वॉज दैट. मेरा तो बहुत ही ज्यादा बिजी. मुझे पता भी नहीं चला कि 5 कब बज गए और यहाँ पे शो शुरू हो गया. यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा बिकॉज गुड टाइम्स they are always like that. You just cannot say कि कहाँ निकल गया. बस निकल जाता है साथ साथ में. यही करते करते अब 8 भी बज जाएंगे उसके बाद ये दिन भी निकल जाएगा. लेकिन कल का दिन बहुत खास है आपको तो पता ही है भाई. आज है आखिरी दिन सितंबर का. कल इट इज गोइंग टू बी 1st of October फॉर अस रेडियो मस्ती 24/7. इट्स वेरी वेरी स्पेशल भाई. हैप्पी वाला बर्थडे है रेडियो मस्ती का. 10 साल एज द 24 आवर स्टेशन हम कल पूरा करने वाले हैं. एंड और भी पीछे जाए तो एज मस्ती 17 साल इमेजिन कर सकते हो. ओ माय गॉड. सोच के ही कैसा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. जो भी लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही लगता रहेगा. फिलहाल के लिए म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. आई विल बी राइट विद आज की ताज़ा खबर पहली वाली ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: मारी मेलोडी, मारी जगत जननी।
3: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
4: Take a break, laugh a little. And vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
5: बॉस का खौफ, बाबू भैया बॉस का खौफ अपना ही एक औदा है उसका, है ना सपना आंटी। रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रॉप के साथ मिथिक ब्लूज चल रहा है। सलमा वेलकम, सुनील वेलकम, वेलकम भाई बहुत ही शानदार, और सभी को वेलकम जिन्होंने जो इस वक्त हमारे साथ ट्यून इन हो रखे हैं। मैं आपके अंतरा यहाँ पर आपके साथ 5:17 और मुझे किसी ने बोला कि भाई आज तो मैंने 2 घंटे की नींद ली, तो मैंने वापस से पूछा कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे तो 2 घंटे की नींद। कहते वैसे तो एक दिन छुट्टी लो और सारी नींद कंप्लीट कर लो, लेकिन छुट्टी लेके कंप्लीट करना, अगर बिना छुट्टी लिए कंप्लीट करने की कोशिश की तो बॉस डांटेगी। मैंने कहा वाह, खौफ देखो आप, खौफ। बट कमिंग बैक टू दिस भाई, खौफ तो देखो एक बना होना, डिसिप्लिन, खौफ, ये सारी चीजें हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमें जो है बतानी चाहिए। अब अगला बंदा फॉलो करे ना करे, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वेल भाई, एक नई जो है मूवी का वो फर्स्ट लुक बिल्कुल शेयर किया गया है। द मूवी इज संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, राइट? रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल कमिंग टुगेदर, क्वाइट भाई ये कॉम्बिनेशन इन इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली एपिक। सो देयर इज दिस पोस्टर जहां पे रणबीर कपूर जो है ना एक विंटेज सी नीली रंग की गाड़ी में, एक हाथ बाहर, खूनम खून वो हाथ, व्हाइट कलर की हाफ टी शर्ट, एकदम बॉडी हगिंग पहनी हुई है, एंड दूसरे हाथ से उन्होंने स्टीयरिंग करके ऐसे करके चला रहे हैं, गॉगल्स डाल रखे हैं, ग्लासेस, एंड बड़े ही स्टड टाइप एकदम लग रहे हैं इसमें। वेरी गुड, सब ने बहुत तारीफ की उसके नीचे, काफी सारा कुछ उन्होंने बोला भी कि अरे ये तो मतलब कत्ल हो गया, खाद ऐसा वैसा तैसा सब कुछ हुआ। बट देन क्रिएटिविटी कम्स जहां पे जो चीज लोग इसका जो है उपयोग अपने हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से कर पाए। सो मुंबई पुलिस जो है उन्होंने ये पर्टिकुलर वाला जो है पोस्टर उठाया, और पोस्टर उठा के रणबीर कपूर के उस वाले फोटो में डाल दिया सीट बेल्ट, जो कि था नहीं। उन्होंने कहा इट्स अ वेरी क्लेवर मेकओवर व्हिच दे डिड टू प्रमोट रोड सेफ्टी, एंड या उन्होंने कहा कि भाई चाहे किसी भी दौर में हो, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो सीट बेल्ट तो होनी ही चाहिए। एंड ऑल थैंक्स टू एआई डूइंग दीज थिंग्स, एडिंग अ सीट बेल्ट टू अ पर्टिकुलर पोस्टर एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम सो वेरी इजी, राइट? बट दैट्स सो अमेजिंग, राइट? क्या कमाल का आइडिया निकाला है, कत्ल कहां, खूबसूरत। सलमा यहाँ पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कल पार्टी कहाँ है, आना कहाँ है, पार्टी तुम दो। हो गया, हम लोग बहुत पार्टी दे चुके। हमारा हो गया इस बार, अब हम अपने अपने अपनी पर्सनल पार्टी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बताओ हमें कहाँ आना है, हम कहाँ पे पार्टी लेने आए, दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। रेडियो मस्ती 24/7 पर चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एंड आई विल बी राइट बैक।

0: राजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: गुलमिल गुलमिल वन डाउन, गुलमिल गुलमिल, ओहो क्या ही गाना है ये। 5:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, आइए आपको बताया जाए ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे का क्या कहता है। हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स उठवास एट CTESLE एक्सिट, एक स्टेशनरी व्हीकल ऑन TPE टुवर्ड्स PIE आफ्टर पासेंजर्स ड्राइव 8, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन बे फ्रंट एवेन्यू टुवर्ड्स बे फ्रंट लिंक आफ्टर मरीना बुलेवार्ड। सो ये तो हो गया इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। ओहो हो, सुनील ने कितनी प्यारी सी ही बात कह दी है यहाँ पे, अंतरा जी मैं रेडियो मस्ती पर सिर्फ आपको सुनने के लिए ही ऑन करता हूँ। सुनील मैं तो तुमसे कहना चाहूंगी, एक तो तुम्हारी चॉइस इतनी अल्टीमेट है ना, कि भाई जिसने भी मस्ती सुनना शुरू किया तो मैं तो उनकी चॉइस पे ही फिदा हूँ, तो मुझे पता ही है कि ये बंदे का चॉइस हमेशा ही बेस्ट होगा। ऊपर से सिर्फ मुझे सुनने के लिए, दूसरों को भी सुना करो, हम सभी बहुत अच्छे हैं, हम सभी बहुत ऐसे ही, मतलब द होल मस्ती फैमिली इज लाइक दैट, सो या आई वुड से दैट है ना। फिलहाल के लिए अली जफर की आवाज लंदन पेरिस न्यूयॉर्क के साउंड ट्रैक से, कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस गाना। गुड इवनिंग,
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: Oh, I hate making love songs.
1: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
2: भाई मैं आप लोगों से ना बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. आज तो कुछ अलग ही चल रहा है. इतनी सारी तारीफ जो है, मारे को शर्म आवे है. इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो आप मेरे लिए कि मतलब मजा ही आ गया सुनकर. एंड यू नो समटाइम्स इट हैपेंस राइट, यू हैव हैड अ लॉन्ग डे एंड सडनली यू नो पीपल आर आउट ऑफ द ब्लू आर टेलिंग यू दैट हाउ दे फील नाइस अबाउट यू एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू एंड आई लव इट कम्प्लीटली. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स यू आर शावरिंग ऑन मी टुडे. बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. रेडियो बस्ती 24/7 अल्ट्रा के साथ यहाँ पर 5:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक. मैं भाई सुदील, आप तो मतलब याद दिला दिया आपने मेरे को कि भाई कानपुर और ये हम, मैं जहां से आती हूँ कानपुर से आती हूँ, यहाँ के लड़के जब इनको पता करना होता है, किसी की कुंडली निकलवानी होती है ना हमारे शहरों में, तो वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं. तो पूछा मुझसे कि वो कैसे हैं, तो मैंने सुनील से पूछा कि वो कौन. कहता है जीजू. मैं मुझे तब से इतनी हंसी आ रही. बहुत ही अच्छे हैं, जहां होंगे अच्छे ही होंगे. नहीं जितना मिस्टीरियस सवाल उतना मिस्टीरियस जवाब. अच्छा लगा. चलो कैसा लगा. वेल चलिए, ये सारी बातें चलती रहेंगी, छेड़खानियां भी यूं ही चलती रहेंगी, मस्ती भी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन खबरें भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, इजंट इट. भाई प्रियंका चोपड़ा जोनस, बड़े दिनों से कोई खबर ही नहीं आ रही थी, बट पता चला है दैट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनस एंड सैफ अली खान, दीज टू माइट कम टुगेदर. नाउ दैट्स सम कॉम्बो यू सी, कि इन दोनों को हमने कोई मूवी में देखा था क्या? ऐसा तो एज सच मुझे ऑन टॉप ऑफ माई माइंड नहीं याद आ रहा है. इफ यू रिमेंबर डू टेल मी. बट देन बड़ा ही ऑफ बीट सा कॉम्बो है, एंड बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट आउट ऑफ इट एज वेल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन इट हैपेंस. जब भी इट हैपेंस वी शैल लेट यू नो, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है आपको इन सब चीजों से अवगत कराते रहना. फिलहाल गत गत करके आगे बढ़ेंगे. जिगर और प्रिया जो है हैवी एंडिंग मूवी से ये वाला गाना ला रहे. आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. देयर समथिंग अबाउट द म्यूजिक एंड जब वो गाते हैं ना कोरस में मिले आ मुझे, और उसके बाद एकदम से रेखा भारद्वाज जी की आवाज आती है जाने ना. आई थिंक यू लिसन टू इट, यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय इट. गुड इवनिंग.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो,
3: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: मुझे कभी कभी लगता है कि व्हाट्सएप की जो है टीम बैठती होगी और कहती है अगर हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं तो कुछ और ही कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आई एग्री विद देम, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 अंतराव के साथ यहाँ पर चल रहा है यस मिडवीक ब्लूज। व्हाट्सएप के देखो दो वर्जन, एक होता है जो नॉर्मल व्हाट्सएप है, दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस। वी ऑल नो दैट, राइट? सो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करने वाले बिजनेसेस के लिए ये अपडेट है। 1st of October यानी कल से इंडिया में स्पेशली अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर कुछ सर्विस और यूटिलिटी मैसेजेस के लिए पर मैसेज चार्ज लगेगा। या सो हुएवर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, तो आपके लिए खबर बिल्कुल बनती है। ये वो मैसेजेस हैं जो बिजनेसेस कस्टमर के मैसेज करने के बाद 24 आवर सर्विस विंडो के अंदर भेजते हैं। सो पहले ये फ्री थे, बिजनेसेस को पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए 30th September तक का टाइम दिया गया है, वरना चार्जेस शुरू होने के बाद उनके सर्विस मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे। लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अभी तक Thank God, कोई चार्ज नहीं है। ये चेंज बिजनेसेस, व्हाट्सएप बिजनेसेस और बिजनेसेस के प्लेटफॉर्म पर फिलहाल के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप पर कस्टमर्स से बात करना है, अपने सेटिंग्स जरूर चेक कर लीजिएगा। मतलब मैं ऐसे बहुत ही रैंडम सवाल है, अगर कल को व्हाट्सएप कहता है कि अब हम आपका जो है ये इनकमिंग आउटगोइंग जो है चार्जेबल कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पता नहीं, मुझे नॉस्टैल्जिया हिट कर गया भाई। पहले हम लोग यही तो करते थे, ये जो है इनकमिंग, क्योंकि पहले के टाइम पे लगती थी तो वो स्क्रैच कार्ड से टॉप अप कराते थे और इतना कर दो भैया, इनकमिंग में बात नहीं हो सकती, चार्ज लगेगा, आउटगोइंग में तो लगता ही लगता था। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? बट फ्रॉम देयर टिल हियर, या वी हैव कम अ लॉन्ग वे। गुड इवनिंग।

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हाँ जी, बातें करते करते पहुंच गए हैं 6 बजे के उस पार. हेलो, हाँ वेलकम. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन यहाँ पर किया है, सभी का स्वागत है यहाँ पर मिडवीक ब्लूज. वेंसडे वाला दिन, सितंबर का आखिरी दिन, बिल्कुल यहाँ पर हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं क्योंकि कल से अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा. कल है 1st of October एंड इट इज मस्ती मीडिया नेटवर्क, मस्ती 24/7, मस्ती मीडिया 24/7, रेडियो मस्ती 24, कुछ भी बुला लो. कल हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, ठीक है? तो भाई हम तो है ही एक्साइटेड ही एक्साइटेड, बट एक्साइटमेंट मुझे इसके लेकर भी हो रही है भाई. जब भी बात हम लोग बॉलीवुड और एक्सेस की करते हैं तो फिर लगता है कि ओ कहां है गॉसिप, जरा चटपटी खबर दो. तो अगर मैं आपको कहूं कि करीना कपूर खान इज गोइंग टू इंटरव्यू, गेस हु, मीरा शाहिद कपूर. अब देखो, हिस्ट्री तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि भाई यू नो राइट, शाहिद कपूर एंड करीना एक टाइम पर यू सी वैसा था, और काफी काफी कैसा वैसा काफी कुछ था, ठीक है, टू द एक्सटेंट जो जब वी मेट, हमें जो मूवी इतनी ज्यादा पसंद है, शाहिद कपूर मतलब ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों ही इस मूवी में हो, एक दूसरे को ये रेकमेंड कर चुके थे एंड दे मेड श्योर, बट देन दैट मूवी वाज एपिक. भाई क्यों गलत बात हम कहे, राइट? सो वेल एनीवेज, भाई हमारी करीना कपूर खान इज ऑल सेट टू इंटरव्यू हमारी मीरा कपूर को एंड इट इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग अमेजिंग वन. देखिए मूव ऑन तो आई एम श्योर कि कर ही लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चंस एकदम आग लगा देने वाले होने चाहिए कि हमें भी पता चले, मजे आए एंड एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. भाई कोई कितना भी कुछ कर ले, जब इस तरह की चीजें सामने आती है ना, सबको सबको पता लगाना है कि ओह क्या पूछा उसने, क्या कहा उसने. मजे तो आते हैं, है ना, है ना भाई, जो चीज है वो है, आते तो है. सो फिलहाल तो यही खबर है. और खबर साथ में मैं ये भी देना चाहती हूँ कि ये सारी बातें एक तरफ और आपको टिकटें जिताना एक तरफ, विच इज डांडिया की टिकट जीतनी है कि नहीं जीतनी है, जीतनी है ना, वो भी सिंगापुर गुजराती सोसाइटी वाला डांडिया. सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि वाला डांडिया, बहुत ही शानदार. जीतना है तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि उसके लिए तो थोड़ा सा बस आए और उसके बाद बताएंगे. तब तक गाने सुनो, एंजॉय करो ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxalam India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा. It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: कभी-कभी क्या रैंडम गाने याद आते हैं ना आपको, और खुद ही आप अपने आप से सवाल कर रहे होते हो कि ये गाना कहाँ से अचानक से जहन में आ गया. रेडियो मस्ती 24/7 पर 6 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट. एंड जी हाँ, मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ यहाँ पे जितवाने के लिए आऊंगी, बहुत ही कठिन प्रश्न लेकर आऊंगी, प्रश्न का होगा आपको देना जवाब. ओके भाई, सिंगापुर एक तो ये जब माहौल आता है ना, ये फेस्टिविटी का, त्योहारों का, एंड दिस फेस्टिव एनर्जी, the beautiful traditions and of course the non-stop dandiya and garba wala season. Singapore Gujarati Society ka Singapore ka truly original Navratri. Oh my god, 16th, 17th and 18th of October, Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. This is the brand new venue this year around. Ye log yahan par karne wale hain. It's even bigger, it's so amazingly beautiful, kya ekdam solid classy. So well, ye jo hai टिकटे हाथ से निकलती हुई जा रही है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी देयर एंड इट्स द बेस्ट, राइट? सो वेल, आपने अगर अभी तक टिकट्स नहीं बुक कराई है तो क्यों नहीं कराइए, सबसे पहला मेरा सवाल यही है. सो एक तो तरीका यह है कि आप उनका जो मैं ये वेबसाइट बता रही हूं वहां पर जाकर आप अपनी टिकट को बुक करा ले, sgs.org.sg/Navratri2026. सो आप यहाँ पे जाएंगे तो अपनी टिकट्स बिल्कुल फ्रेंड्स फैमिली जितने सबके साथ जाइए, एंड दिस इज द टाइम एंड माहौल जहाँ पे, एंड नॉट ओनली इट्स जस्ट घर के बच्चों के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ, नो, योर इवन दिस टाइम अराउंड द सीनियर्स जो है उनके लिए वो भी डेब्यू करने वाले हैं एक अलग से, ताकि वो अपने पेस पे गरबा खेल सके, अपने पेस पे डांडिया खेल सके. एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट थॉट. इफ यू गो टू आर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, वहां पर उल्लास जी जो है उनका वीडियो आपको वहां पे मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट शी इज सेइंग, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, द होल थॉट इन इटसेल्फ इज सो ब्यूटिफुल, राइट? अब नाउ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज मुझे देना है आपको मौका टू विन टिकट्स टू दिस वन, ओके? एंड बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछू. गरबा इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग कौन सा फेस्टिवल? गरबा ट्रेडिशनली किस फेस्टिवल के दौरान खेला जाता है? ए दिवाली, बी नवरात्रि. बहुत डिफिकल्ट सवाल. यस, गरबा ट्रेडिशनली किस फेस्टिवल के दौरान खेला जाता है? ए दिवाली, बी नवरात्रि. अपने आंसर्स 9158963 पर भेज दीजिए फटाफट, विदाउट इसमें सोचने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो टेक्निकली अगर बात की जाए. सो वेल, अगर इसको और भी थोड़ा सा माहौल बनाना है तो फिर अगला गाना भी प्ले कर देती हूँ, तो वो साथ साथ में माहौल बनते बनते आप टाइप करके ए या बी सही जवाब मुझे भेज दीजिए. एंड क्या पता आज वो दिन हो वेयर यू स्टैंड टू विन दिस amazing ticket from me, isn't it?

भाई यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है हमारे सुनील जी, ऑल द वे फ्रॉम भारत से भाई रिक्वेस्ट आई है, और 90s का गाना हमें कहीं से भी रिक्वेस्ट आती हो वी लव टू प्ले दैट। सुनील गुप्त मूवी का ये गाना, आई होप यू एंजॉय वहां पर, क्योंकि हम करेंगे एंजॉय इसे यहाँ पर ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: ऐसी प्यारी प्यारी चीजें, प्यारी प्यारी बातें जब लिखकर आप भेजते हो ना, ओ माय गॉड. हमारे भाम बापू जो गुजरात से हमें सुनते हैं, ओ माय गॉड, ही हैड रिटन अ सॉन्ग एंड ही जस्ट रिवाइव्ड सो मेनी मेमोरीज एक साथ यहाँ पर. भाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ being a global kind of a radio station. And nahi chahe aap Bhopal mein ho, Gujarat mein ho, Jabalpur mein ho, Kanpur mein ho, kahin par bhi ho, international kahin par bhi ho, Dubai ho, US ho, London ho, from anywhere, you just we are just there and you are there. And हम दोनों जब मिलते हैं तो बात बन जाती है. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतर आपके साथ यहाँ पर 6:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे. भाई सिंगापुर की बात करते हैं. सिंगापुर में बस और एमआरटी से ट्रैवल करने के लिए मेरे जैसे जो लोग हैं, कुछ ऐसा है भाई कि इस साल की 26 दिसंबर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर्स 7% इंक्रीज होने वाले हैं. सो अडल्ट कार्ड यूजर्स के लिए हर जर्नी पर 12 या 13 सेंट्स ज्यादा लगेंगे डिस्टेंस के हिसाब से. स्टूडेंट्स, सीनियर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कंसेशन कार्ड का फेयर्स जो है 5 सेंट्स पर ट्रिप बढ़ जाएगा, वाइल जो वर्क फेयर ट्रांसपोर्ट कंसेशन स्कीम कार्ड के फेयर्स है और मंथली पास के प्राइसेस जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे. कैश से पे करने पर अडल्ट के लिए 20 सेंट्स एंड कंसेशन ग्रुप्स के लिए 10 सेंट्स एक्स्ट्रा होने वाला है. सो लोअर इनकम हाउसहोल्ड्स को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाउचर्स मिलेंगे. $60 से बढ़ाकर उसको अब $80 कर दिया जाएगा और एलिजिबिलिटी भी एक्सपैंड होगी. सो इफ यू आर वन ऑफ द, आई थिंक इन सिंगापुर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि गाड़ी तो सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है, यू नो, जस्ट लाइक माय बॉस. हमें जब करना होता है ना ट्रैवल, तो हमें जब ऐसे शौक करने होते हैं तो हम कहते हैं, हम को बॉस को पूछते हैं कि हम एक इधर हमें एमआरटी स्टेशन तक प्लीज ड्रॉप कर देना अगर आप उस तरफ जा रहे हो. दैट इज द यूजुअल थिंग विच वी ऑलवेज टेल हर. सो वेल, ये था इस बारे में सिंगापुर के इसका ट्रांसपोर्ट का अपडेट. बट ये दिसंबर से लागू होगा, सो नथिंग टू वरी अबाउट राइट हियर राइट नाउ. ऑल यू हैव टू डू इज एंजॉय द गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 फ्रॉम द मूवी लव आजकल.

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free. Free. Free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
5: फेस्टिवल्स की बात हो, शॉपिंग की बात ना हो, ये तो हैंड इन हैंड जाते हैं मेरे दोस्त. रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ मिडवीक ब्लूज चल रहा है. शॉपिंग की बात करो तो वैसे भी हमको कोई ब्लूज नजर नहीं आते हैं. हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारा हमेशा ही कार्ट में कुछ ना कुछ पड़ा ही मिलता है. नहीं, आपके भी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि आप मतलब शर्त लगा लो कि जितने से वेबसाइट से मैं कुछ भी मंगाती हूँ उसके कार्ट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा होता है. बट देन नो, जाके एक जगह पर जब आपको एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. भाई 10 दिन के दीपावली शॉपिंग के लिए जानना है कहाँ जा सकते हैं आप. बिल्कुल 43rd Zaxxon India की मैं बात कर रही हूँ. द फैमिली एक्सपो, इट रिटर्न्स बिगर देन एवर. 20th एनिवर्सरी इनकी भी है जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. 16th से 25th ऑफ अक्टूबर तक हॉल 9 Foyer 3 सिंगापुर एक्सपो में जो है एंट्री एक तो फ्री होती है, लाइक एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल ईयर. ओके, जितने भी लेटेस्ट स्टाइल्स हैं, फेस्टिव फाइंड्स हैं, कॉम्पिटिशन हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं, प्लस इन सब के अलावा यू कुड विन मोबाइल फोन्स, क्रूज डिनर्स, वाउचर्स, इवन अ फ्री एयर टिकट टू डेस्टिनेशंस लाइक दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क. आप तो बस नाम लीजिए हाजिर. सो यू कैन टेक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सोक अप दैट फेस्टिव स्पिरिट एंड मेक द मोस्ट ऑफ सिंगापुर्स बिगेस्ट दीपावली डिस्काउंट सेल्स. Zaxxon India Family Expo 16th to 25th of October. Miss तो नहीं ही करना है ना? Celebration चलती रहनी चाहिए.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ

मूड चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें. Ladies and gentlemen and party people in the house. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? 7 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं रेडियो मस्ती 24/7. मिडवीक ब्लूज चल रहा है. चलो पार्टी का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, क्योंकि बापू ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, उन्होंने जो है ऐसा तड़कता भड़कता गाना मांगा है कि अब मैं क्या ही करूं. मतलब ये गाना ही कुछ ऐसा है कि जब जब ये बजा है मेरे तो घर में पराठे भी जल चुके हैं इस गाने के चक्कर में, क्योंकि मैं एक गाना सुनने लग गई थी और नाचने लग गई थी इसके साथ साथ. एंड आई रिमेम्बर रेणुका तब शो कर रहे थे एंड आई वाज लाइक ये क्या किया, बट देन टोटली वर्थ इट. भाई जस्सी पाजी और ये गाना, इट इज क्वाइट एपिक. सो हो जाए, लेट्स गो, हो जाए.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: ओ माय गॉड, दिस गाना, आई टेल यू, मतलब कि मजा ही आ जाता है. जब जब ये गाना प्ले हुआ है तब तब मजा आया है. थैंक यू मॉम फॉर रिक्वेस्टिंग बिकॉज आई क्वाइट एंजॉयड इट. हमारे लिए तो ऐसा है कि भाई 90s का बहाना मिलना चाहिए, हम कभी भी उसको चला देते हैं. सो वेल 7:07 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7. मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ. और मैंने भी ऐसी वाली लाइफ चाहिए भाई, कैसी वाली लाइफ चाहिए. आजकल लोग जो है, जब उनका हृदय परिवर्तन होता है कि हो गया ये वाला काम, हमने काफी कर लिया, अब हमें कुछ और करना है. एंड यू नो लाइफ एक्चुअली गिव्स देम दैट चांस. राइट, यूके की एक लॉयर है, 4 साल इन्होंने लॉ जो है इन्होंने किया, क्रिमिनल डिफेंस करियर रहा इनका, काफी अच्छा ही चल रहा था. बट देन अलोंग साइड यू नो हर किसी का एक पैशन सा होता है कि ये भी करना काफी पसंद है, तो इनको पेट्स और एनिमल्स से काफी काफी ज्यादा प्यार है. अब कुछ ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इन्होंने अपनी लॉयर वाली कर दी जो है जॉब खत्म, उधर से रिजाइन करके नाउ शी इज अर्निंग अपेरेंटली 50,000 पर डे. जी हाँ, अब वो डॉग वॉकर बन चुकी है. ये एक ऐसा करियर स्विच है जो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग सा हो गया, फ्रॉम लॉयर टू डॉग वॉकर. सो वेल अब वो पर डे के हिसाब से कमाती है एंड शी सेज दैट शी completely is enjoying what life has to offer at this point of time. Bhai, unhone kaha she found constant pressure and workload jo ki unke peace of mind ko affect kar raha tha, and then dheere dheere karke ek din one sudden day she took that call and she decided to start her own full time dog walking business. Itna matlab एक्चुअली डॉग वॉकिंग इज क्वाइट अ थेरेपी इन इटसेल्फ. मैं भी जब कुकी को वॉक कराने लेकर जाती हूँ, आधे लोग तो मेरे को जानते ही उसकी वजह से है, या सो ओ कुकीज मॉम कुकीज मॉम. एंड भाई उसके अपने जो है दोस्त यार वो वाली चलती है, बट देन ऑल्सो जस्ट गोइंग आउटसाइड एंड वॉकिंग, टेकिंग दैट फ्रेश एयर, All of these things is भाई बाकी हमारे पेट तो है ही, दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट है. मैं भी सोच रही हूँ ये वाला साइड का जो बिजनेस है, एक्चुअली इट इज नॉट दैट बैड. पेट्स तो मुझे भी बड़े पसंद है, क्या कहते हो दोस्तों? मैं कहती हूँ कि प्ले करती हूँ. कल ही 10 साल पूरे हो रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 के, मेरी बातें सुन लो यहाँ पे. कुटी हूँ नहीं.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी
3: कृषिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com. प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस. बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com.
4: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर.
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Now, mood change kare.
6: तो क्या कहा सुनीता ने फिर? कौन सुनीता? आजकल एक ही सुनीता की बात हो रही है. रेडियो बस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. बाय द वे, सुनीता, अनीता एंड एवरीबॉडी हु हैज ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जीजी मार्ट का आपने जामुन ट्रायंगल्स ट्राई किए हैं? इनके रागी लड्डू भी काफी काफी अमेजिंग है. अगर नहीं किए हैं देन यू मस्ट ट्राई, क्योंकि मैंने जब ट्राई किया तो लोगों ने मेरे घर पे आके पूछा. मेरा दोस्त तो ले ही गया वो डब्बा, कहते तू तो वापस से, तू अमीर है. उनके लिए मैं अमीर हूँ, आप सोच सकते हैं. तू तो अमीर है, तू वापस से ऑर्डर कर दियो, ये मैं लेके जाता हूँ. इतना कमाल लगा उनको. सो इट वर्क्स लाइक सच अ नाइस थिंग, राइट? यू आप चलते फिरते हैं, इट्स आल्सो इट हैज गॉट इट्स लाइक हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि जामुन का फ्लेवर भी और हेल्थ बेनिफिट्स भी, एंड उसको एकदम उस तरह से आप प्रेजेंट कर दो मुखवास टाइप में, तो फिर और भी ज्यादा कमाल हो जाता है, लेवल नेक्स्ट हो जाती है. अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए. सो अगर इफ यू हैव नॉट, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, गो एंड गेट योर्स टुडे. सो ये तो हो गई ये वाली बात. एंड कृषिवल के नट्स तो आपको पता ही है मेरे कितने ज्यादा फेवरेट है, वो तो हमारे स्टूडियो में ही यहाँ पे रखे रहते हैं, बिकॉज वी ऑल लव इट, मी एंड नुपुर एंड एवरीबॉडी टेक्स देम. हाँ जी, तो अब करते हैं सुनीता की बात. सुनीता आहूजा की मैं बात कर रही हो, तो आपको तो पता ही है कोलाबारी जो है दोनों तरफ से चल रही है. गोविंदा कुछ करते हैं, किसी के साथ बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद सुनीता जी को बुरा लग जाता है, एंड देन गोविंदा जिनके साथ बाहर गए थे उनका नाम कोमल, कोमल कुछ कहती है कि जिनका घर ऑलरेडी टूटा हुआ है तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं, हमें उसमें पत्थर मारने की तो जरूरत भी नहीं है. एंड देन सुनीता जी जो है वो कहती है कि हम, ये तो हमारे घर ही, मेरा घर टूट रहा है इसीलिए मैं मंदिर आई हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए. Now, all of a sudden, एक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि ये घड़ी घड़ी जो बदलाव आता है ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. Now she is saying that गोविंदा के बारे में, ना उनके को-स्टार के बारे में, ना मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. I am seeing that he is happy. God bless him. जैसी उसको जिंदगी जीना है वो जिए, क्योंकि मुझे ये सब पर फोकस नहीं करना है. I just pray to God कि वो जहां भी है, जिसके साथ भी है, खुश है और खुश रहे. सुनीता जी, I will not say anything on this because क्या पता मैं ही अगले शो में अपने आके बोल रही हूँ कि पता है अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या बोला. So yeah. Let us leave it like that and over there, जब तक कि कुछ बहुत ही ज्यादा अलग नहीं हो जाता है. But इसको हम ट्रैक कर रहे हैं, कहानी जो है बिल्कुल अपडेट के साथ चलती हुई जा रही है. अब इनको ये भी नहीं कह सकते यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ना ना ना ना.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: सडनली किसी ने मुझसे कुछ सवाल पूछा और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं अपनी उम्र में। फिर मुझे लगा कि मेरी उम्र ही क्या हुई है और मिस्टेक्स का क्या, वो तो चल रही है, मतलब ये तो चलती ही रहेंगी क्योंकि यही तो इंसान है, ये मिस्टेक्स कर करके सीखता है और इवॉल्व होता जाता है ना। ये था बहुत ही सही जवाब, 10/10 ऑन दिस। 7:30 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे, आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। हैवी ट्रैफिक जो है आपको मिलेगा ऑन CTE टुवर्ड्स AYE एट PIE चांगी एग्जिट, व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा AYE towards Tuas after Buena Vista, or vehicle breakdown ki khabar on SLE towards BKE at your Chukang Road entrance. Ye to ho gaya yahan ki baat, gaane ki baat. Oh ho ho, Mika Paji waiting for us. Desi Boys ke soundtrack se coming up is this another ekdam party type gaana on Radio Masti 24/7.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: एक सवाल आया है जहन, मैं पूछ सकती हूँ? रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. भाई कोई ब्लूज नहीं होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, वेंसडे वाले दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं. हम वो वाला गाना चलाता ना पिछले घंटे, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हमको लगता है कि हमारा शनिवार आज से ही शुरू हो जाता है, हम मूड में कुछ ऐसा आ जाते हैं. और अब ये गाना चल रहा था, सुबह होने ना शाम होने दें. एंड देन सलमा जो है रिमेम्बर कर रही थी कि जॉन अब्राहम क्या ही लगे हैं इसमें. भाई जॉन अब्राहम अपने टाइम में जो उनको करना था वो उन्होंने सब कर दिया भाई, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. एक्चुअली में जो उस वक्त उस टाइम पे बड़े हो रहे थे, तो जिन्होंने देखा है जॉन अब्राहम को उस वक्त, अभी भी ही लुक्स क्वाइट क्वाइट नाइस, बट उस वक्त जो एक डिफरेंट टाइप का बंदा दिखा हमको, और हमें लगा कि ओहो हो, ऐसा भी होता है, ऐसा कैसे होता है. सो जॉन अब्राहम वाज वन लाइक सो मॉडल टाइप के जो लड़के होते हैं, सो जॉन वाज वन टाइप, एंड देन मिलिंद सोमन वाज अनदर टाइप, एंड दे आर बोथ एजिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली वेल. अच्छा मैं पूछ ये रही थी कि अगर कोई ये सोच रहा हो मेरे जैसा इंसान कि कोई एक ऐसी मूवी आपको सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, जो कि आप बहुत बार देख चुके हो लेकिन आप उसको वन मोर टाइम, उसको देखे आप तो आपको काफी टाइम हो चुका है, बट देन यू आर रेडी टू वॉच वन मोर टाइम, एंड दिस मूवी नीड्स टू हैव एटलीस्ट 5 से 6 बार तो आपने देखी हो, इससे ज्यादा तो होगी तो और भी बेटर, बट एटलीस्ट 5 से 6 बार आपने देखी हो, एंड बट यू लव इट कंप्लीटली एंड यू वॉन्ट टू वॉच इट अगैन. लिस्ट बनेगी ना, उससे मेरा वीकेंड डिसाइड होगा. आप देख रहे हो मेरी प्लानिंग ऐसे किसे कौन कहता है, मैं प्लानिंग नहीं करती, मेरी प्लानिंग देखो मैं आज से वेंसडे से ही शुरू हो गई है वीकेंड की तरफ. सो यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि ऐसी कौन सी एक मूवी है जो आपने बहुत बार देखी हुई है, बट देन यू वुड लव टू वॉच इट वन मोर टाइम, एंड व्हाई आई शुड वॉच इट, है ना? अच्छा सवाल है ना, वेरी गुड. अगला जो गाना आ रहा है ये मेरी चीजी मूवीज के लिस्ट में है, ये भी मैं कई बार देख चुकी हूँ. हम लोग पूरी फैमिली मिलकर लोनावला घूमने गए थे, एयरबीएनबी बुक किया था हमने, पूरे खानदान ने मिलकर बैठकर वापस से डायलॉग बाय डायलॉग रिपीट किया इस मूवी का देखते हुए, बिकॉज दैट ऑल्सो इन इटसेल्फ इज सच एन अमेजिंग थिंग, राइट? आप गाना सुनोगे तो खुद ही पहचान जाओगे. चलो लेट्स गो.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition, standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: Hello, namaskar, adab, sat sri akal, game jai Singapore, saru jai.
2: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
4: चेक इट आउट
2: टेक अ ब्रेक लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट बिकॉज़ वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आओ मूड चेंज करें
5: क्या बात कर रहे हो सुनील तुमने कभी खुशी कभी गम नहीं देखी ओहो हो क्या मतलब अलाउड ही नहीं है ये तो अब तुम्हारे पास यही काम है एक अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जितनी भी पढ़ाई वढ़ाई सब तुम कर रहे हो देखनी ही है तुमको ये एक बार तो बनती ही बनती है क्या ही कह दिया तुमने ओ माय गॉड रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई थी अब थी इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कल वापस आना पड़ेगा और कल तो हैप्पी बर्थडे टू यू भाई मस्ती का बर्थडे है तो आना तो पड़ेगा ही और कल तो थर्सडे है ना हमारे 90s मिक्स टेप वाला दिन है यानी कि वो 3 घंटे ऑफ हमारा प्योर 90s नॉस्टैल्जिया का ओहो बहुत ही शानदार सो कल होगी आपसे मुलाकात एंड बिल्कुल आप कल तो मतलब पूरा दिन ऑन एयर भी ऐसा लगेगा कि ओहो आतिशबाजियां तैयारियां ये वो कल शाम का शो भी खास है खासम खास है सो ऑल ऑफ दिस एंड मोर बाकी हमारी जो वो वाली बातें हैं ना कि तहे दिल से ये है वो है हम ऐसा सोच रहे थे सो ऑल अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल सो ये सारी बातें कल की डेट में होंगी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत आई होप यू एंजॉयड आज का शो और या जस्ट हैव अ फैंटास्टिक द रेस्ट ऑफ द डे अहेड यहाँ पर तो रात होने वाली है इंडिया में जो है अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है आपके पास हमारे से थोड़ा सा ज्यादा जो है समय और है वो एंजॉय करिए एंड आई शैल सी यू टुमारो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी?

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप और क्या कर रहे थे आप? क्या कहा? मेरा इंतजार। ये जवाब कितना खुशगवार हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं जब आपको कोई कहे कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है यू आर ऑन क्लाउड 9, वही फीलिंग आती है। लगता है इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में कोई तो है जो आपका इंतजार करता है, आपकी कहानियों का इंतजार करता है, आपकी कहानियों को सुनता है। वेल, सबसे पहले तो इसी बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। अरे मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना आपने? वेल, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फिर से और मेरा नाम है समर, समर लेजेंड्स वाला। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी मैं जिनकी लेकर आया हूँ वो हैं जिन्हें मशहूर अदाकारा गीता वाली जैसा ही दर्जा दिया जाता है, यानी उतनी ही चुलबुली और आंखों में शरारती मुस्कान भर कर रखने वाली अदाकारा। वो जिनकी माँ भारतीय सिनेमा की एक अदाकारा थी, वो जिनकी बेटी बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस है, यानी एक नहीं बल्कि कई जनरेशन जिनकी सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही भारतीय सिनेमा के बॉलीवुड बनने तक के सफर में। तो अब मैं और ज्यादा पहले क्या बुझाऊँ, आप समझ गए होंगे, आई गेस समझ गए होंगे, नहीं समझे? ये
2: हम काय को डरेगा, हम तेरे साथ भाग के थोड़ी आया है, बैंड बाजे के साथ लग इन किया है। हाँ।
1: ओ, अभी भी नहीं समझे? ओहो चलिए अब मैं बताई देता हूँ, ये और सुन लीजिए।
3: अब उसे ढूंढिएगा नहीं, ना ही मेरे पीछे आइएगा। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे शरीर को बांध सकते हैं।

0: दिल को संजीरे नहीं पहना सकते आपकी बेटी तनु।
1: जी हाँ, यह मशहूर एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी तनुजा और काजोल की मम्मी तनुजा, जिन्हें उनके लाइट रोल्स के लिए जाना गया।

ऐसे ही किरदार निभाए और कहा गया कि ये समर्थ रोल नहीं करेंगी, पर वक्त के साथ इन्होंने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए और एक समर्थ अभिनेत्री का टाइटल हासिल किया। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, उनकी हंसी, उनका लाइफ को एंजॉय करने का तरीका, उनका करियर, सब कुछ। But have patience, कुछ गाने सुन लेते हैं पहले उनकी फिल्मों से। You stay connected to Radio Mirchi 24/7 Live. This is Singapore's only Hindi radio now on the go. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनने के लिए जरूर लौटेंगे। जा कहाँ हैं आप? लौटने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं रहिए, सुनते रहिए।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से सिंगापुर, मेरे यानी समर के साथ. और आज के हमारे जो फनकार हैं वो हैं गॉर्जियस तनुजा मुखर्जी. देखिए, बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कमाल का काम करते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ ना, देखिए वहां से अंतरा मेरी तरफ देखती है. रेडियो पर दिखता नहीं है, मुझे मालूम है दिखता नहीं है, लेकिन मैं मन की आंखों से दिखाता हूँ. अंतरा, तो तुम तो वो खाओ जो रखा तुम्हारी टेबल पर, संतरा. एंजॉय एंजॉय. चलिए मुझे बात करने दीजिए. हाँ, तो मैं गॉर्जियस तनुजा मुखर्जी की बात कर रहा था. तो बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कमाल का काम करते हैं. मतलब उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि भाई ये तो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने थे. लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो कभी फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहते थे. उनका कोई सपना भी नहीं होता फिल्मों में काम करने का. लेकिन वो कहते ना, किस्मत में लिखा था, तो फिर कुछ ऐसा ही हो जाता है इनके साथ. और फिर ये फिल्मों में आ जाते हैं, और जब आते हैं तो फिर धूम मचा देते हैं. आज की फनकार तनुजा भी कुछ ऐसी ही है. हालांकि पूरा परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से था, और न सिर्फ परिवार, रिश्तेदार भी फिल्मी बैकग्राउंड से थे. 23 सितंबर 1943 को, 23 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ मुंबई में एक मराठी परिवार में. इनके पिता कुमार सिंह समर्थ एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, और माँ शोभना समर्थ 30s और 40s की स्टार हीरोइन थी. परिवार में इनके अलावा दो बहनें और एक भाई भी था. नूतन को तो आप जानते ही होंगे. कौन नहीं जानता नूतन को, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा. कौन नहीं जानता नूतन को, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा. वो इनकी बड़ी बहन थी. तनुजा ने स्विट्जरलैंड से स्कूलिंग की. स्कूलिंग के बाद ये इंडिया आ गई. लेकिन इनके माँ बाप की शादी के 10 साल बाद ही दोनों अलग हो गए. दोनों में तलाक हो गया. दोनों अलग रहने लगे तो थोड़ी पैसों की कमी आ गई, और इसी कमी के चलते इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की. हालांकि बड़ी बहन और माँ फिल्में कर रही थी, लेकिन नूतन ने भी शादी कर ली थी. अब जाहिर सी बात है वो अपने परिवार को संभालेंगी, तो बहरहाल अब पूरी जिम्मेदारी तनुजा पर आ गई. तो इस जिम्मेदारी को कैसे संभाला तनुजा ने, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर तनुजा की कहानी समर के साथ.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आइए वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव। और आज आप सुन रहे हैं तनुजा मुखर्जी की कहानी मेरी यानी समर की जुबानी। ब्रेक से पहले बात चल रही थी कि पिता कुमार सिंह समर्थ और माता शोभना समर्थ के तलाक और फिर बड़ी बहन नूतन की शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब तनुजा जी पर ही आ गई। अब इनके पास न तो कोई डिग्री थी जो ये कुछ और कर लेती, बहरहाल इनको फिल्में ही करनी पड़ी। तो सिंगापुर जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि किस्मत में लिखा होता है तो फिर वही करना पड़ता है, तो इसी तरह फिर तनुजा को भी फिल्में ही करनी पड़ी, जबकि ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका बचपन से। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो पहली फिल्म जो इन्होंने की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और वो थी अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ और फिल्म का नाम था हमारी बेटी।
2: मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं।
1: जी ये इसी फिल्म का डायलॉग था हमारी बेटी का, उनकी पहली फिल्म का। ये फिल्म इन्होंने जब की तब ये महज 7 बरस की थी, लेकिन एज अडल्ट हीरोइन इन्होंने पहली फिल्म की छवि ली जिसमें ये एक बार फिर अपनी बड़ी बहन नूतन के ही साथ थी। नूतन ने इसमें लीड रोल प्ले किया था, लेकिन एक साल बाद ही इनकी पहली फिल्म आई एज अ सोल लीड, नाम था उसका हमारी याद आएगी।

और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केदार शर्मा ने। ये फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक किस्सा बहुत चला, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। देखिए होता ही है कि अगर आप फिल्मी परिवार से हैं और आपके परिवार के दो तीन लोग स्टार हैं, तो फिर आप चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेते नहीं है, जल्दी से नहीं लेते। कुछ ऐसे ही तनुजा के साथ भी हुआ। एक तो इनकी हिंदी पर पकड़ बड़ी कमजोर थी, अच्छी नहीं थी जी, इसलिए डायलॉग्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी बात यह कि फिल्म में एक सीन रोने वाला था, लेकिन तनुजा ने डायरेक्टर केदार शर्मा को बोला कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है, हम इसे कल करते हैं। बस इतना बोलना था कि केदार शर्मा ने पूरी यूनिट के सामने तनुजा को थप्पड़ जड़ दिया साहब जोर से। सिंगापुर ये तो गजब हो गया। लेकिन इस थप्पड़ के बाद तनुजा ने क्या किया, क्या किया जानना चाहते हैं? जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानिएगा आप। इस इंटरेस्ट को बरकरार रखिए और इन गानों के बाद मिलिए मुझसे यहीं पर। मैं भी कर रहा हूं आपका इंतजार, आप भी कीजिएगा इन गानों के बाद मेरा इंतजार। मेरा नाम है समर, रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर हाजिर होऊंगा और इस गाने को आगे बढ़ाऊंगा।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी की। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है वो। खैर, हम फिल्म हमारी याद आएगी कि उस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें डायरेक्टर केदार शर्मा ने तनुजा को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे आज रोना नहीं आ रहा है, मैं कल ये सीन कर दूंगी। सिंगापुर केदार शर्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ऐसा ही कारनामा एक बार पहले भी केदार शर्मा कर चुके थे जब राज कपूर साहब को इन्होंने थप्पड़ मारा था। जी, इतने बड़े डायरेक्टर थे ये, किसी को भी थप्पड़ मार देते थे। जब राज साहब इन्हें असिस्ट किया करते थे तो राज साहब ने थप्पड़ खाया था इनसे, तो साहब तनुजा थप्पड़ खाने के बाद सीधी घर गई उसी वक्त और माँ को जाकर बोला कि ऐसा कुछ हुआ उनके साथ सेट पर। तनुजा को लगा कि माँ हेल्प करेंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। केदार शर्मा जी की शिकायत कर रही थी तनुजा, लेकिन शोभना समर्थ ने सब कुछ सुनकर तनुजा को ही जोरदार डांट दिया। बोला, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम माँ नखरे कर रही होगी, केदार शर्मा जी ने जो किया सही किया। बहरहाल अब तनुजा क्या कर सकती थी भाई, लेकिन फिर इन्होंने सेट पर ऐसा कभी नहीं किया और उसका नतीजा हम देख भी सकते हैं। फिर इन्होंने कितनी फिल्में की और देखा जाए तो आज भी कर रही हैं। और इसके बाद से वो अपने करियर को, अपनी एक्टिंग को सीरियसली लेने लग गई। बातें भी बहुत सारी बाकी हैं सिंगापुर, सब बातें करेंगे, तनुजा की पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इन गानों के बाद। यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus present Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Aha!
3: Suat.
1: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
4: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.
5: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। और आपको ये शो कैसा लगता है आप इस बारे में हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। प्लीज डू राइट अस, क्या चाहते हैं आप, कौन से गाने सुनना चाहते हैं और क्या चेंज चाहते हैं शो में। अब देखिए मैंने अपना अंदाज बदल दिया अभी के कहने पर, तो आपके फीडबैक्स नहीं फ्यूल है हम लोगों के लिए, तो आप प्लीज डू दैट। हाँ, कुछ लिखिए वहां पर। तो तनुजा जी की जिंदगी पर हम कुछ बातें कर रहे हैं। वेल आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में और 1961 का किस्सा सुनाता हूं मैं। भाई क्या हुआ, 1961 में हिंदी फिल्मों में तो काम कर ही रही थी तनुजा जी, उन्होंने साथ साथ बंगाली फिल्म्स में भी काम करना शुरू कर दिया। बंगाली में इनकी पहली फिल्म आई 1963 में, फिल्म का नाम था देया निया। ये फिल्म सुनील बंदोपाध्याय ने डायरेक्ट की थी और इसमें इनके साथ उस जमाने के मशहूर और मारूफ एक्टर उत्तम कुमार थे, बंगाली के सुपरस्टार थे, बंगाली फिल्म के उत्तम कुमार। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी। फिल्म में एक रोमांटिक सीन था जिसमें तनुजा को उत्तम कुमार के साथ रोमांस करना था, लेकिन अब पहली फिल्म थी तो तनुजा थोड़ी नर्वस हो रही थी। लेकिन जैसा कि एक इंटरव्यू में तनुजा ने बताया था कि मैं बहुत नर्वस थी, तो मैंने उत्तम दादा से पूछा कि दादा की कोरबे किमन करे कोथो बोलबे, मतलब कि कैसे करूं कैसे बोलूं। लेकिन फिर दादा ने कहा कि देखो ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये सब फेक है, आराम से करो। एंड फिर मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया एंड वो फिल्म हिट रही, खूब चली। 1961 से लेकर 65 तक तनुजा जी ने कुल मिलाकर 8-9 फिल्में कर ली थी, जैसे कि 61 में उन्होंने की थी मेम दीदी, इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। 63 में आज और कल, इसमें माला सिन्हा और सुनील दत्त भी थे साथ में। और 65 में चांद और सूरज, इसमें ये नजर आई धर्मेंद्र जी के साथ। और इसी साल भूत बंगला जो महमूद साहब ने बनाई थी, ये फिल्म थोड़ी चली, लेकिन इन सब फिल्मों से बस काम चल रहा था। और एक बात ये भी थी कि इस वक्त तक इन्हें ना हर फिल्म में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल मिल रहा था, कामयाबी और पहचान जिसे हम कहते हैं ना वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो मिली और कब मिली इसके बारे में बात करेंगे इन गानों के बाद। सो यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।
6: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: खवातीन हज़रात, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल हिंदी फिल्मों के लेजेंड्स की मैं कहानी सुनाता हूँ शो में, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से और मेरा नाम है समर। हर एक्टर की लाइफ में एक फिल्म ऐसी होती है जिसका उसे इंतजार होता है, जिसके बाद वो फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वो माइलस्टोन जो उसकी जिंदगी में सबसे पहले लगा होता है उसके करियर में, है ना। तो तनुजा की लाइफ में भी वो दिन आया, लेकिन वो कौन सी फिल्म थी बताता हूँ। 1966 में शाहिद लतीफ के डायरेक्शन में और गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी और इस फिल्म ने तनुजा को रातों रात स्टार बना दिया था।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: खवातीन हज़रात, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल हिंदी फिल्मों के लेजेंड्स की मैं कहानी सुनाता हूँ शो में, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से और मेरा नाम है समर। हर एक्टर की लाइफ में एक फिल्म ऐसी होती है जिसका उसे इंतजार होता है, जिसके बाद वो फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वो माइलस्टोन जो उसकी जिंदगी में सबसे पहले लगा होता है उसके करियर में, है ना। तो तनुजा की लाइफ में भी वो दिन आया, लेकिन वो कौन सी फिल्म थी बताता हूँ। 1966 में शाहिद लतीफ के डायरेक्शन में और गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी और इस फिल्म ने तनुजा को रातों रात स्टार बना दिया था।

0: इस फिल्म का हर एक गाना सुपरहिट हुआ और माला सिन्हा से ज्यादा तारीफ इसमें तनुजा जी को मिली।
1: पूरे फंसे हम तो।
2: क्यों?
1: शराबी जुगो, क्या मुंह दिखाऊंगी जमाने को?
2: देखो ना, मैं शराबी हूँ न चुनीलाल।
1: तो फिर?
2: मेरा नाम जितेंद्र है।
1: सुषमा के सगे मामा?
2: अब तो जमाने को मुंह दिखा सकूंगी।
0: इतनी खूबसूरत लगी थी तनुजा इस फिल्म में कि क्या कहिए, और बेहतरीन एक्टिंग भी की उन्होंने। ओपी नय्यर साहब का बहुत ही सुंदर म्यूजिक था इस फिल्म में। फिल्म में इनके साथ धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र के होने का एक किस्सा है। दरअसल इस फिल्म के हीरो गुरुदत्त होने वाले थे, लेकिन आधी फिल्म की शूटिंग के बीच में ही गुरुदत्त साहब की ट्रेजिक डेथ हो गई। मतलब आधी फिल्म शूट भी हो चुकी थी उनके साथ, और गुरुदत्त साहब के चले जाने से एक महान कलाकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कमी आ गई। टाइम्स ने सदी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट बनाई, जिसमें गुरुदत्त साहब का भी नाम था। चलिए अब बात करते हैं इसी फिल्म की, लेकिन अब फिल्म को तो शुरू करना था ना, तो फिर इसमें धर्मेंद्र साहब को लिया गया, और धर्मेंद्र ने भी क्या खूब काम किया साहब इस फिल्म में।

कमाल का काम। वेल, इस फिल्म के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में तनुजा जी को मिली, उन सब की बातें करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनकी फिल्मों से कुछ और बेहतरीन गाने सुनवा देता हूँ आपको। आप सुनते रहिए तनुजा स्पेशल लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से.
3: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से. आज हम तनुजा की कहानी सुना रहे हैं आपको. तनुजा मुखर्जी, काजोल की मम्मी, नूतन की बहन. और चलिए, ब्रेक से पहले जहां मैंने कहानी छोड़ी थी वहां से इस कहानी को आगे बढ़ाते. 66 में सुपरहिट फिल्म देने के बाद बहाने फिर भी आएंगी. इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसमें वो फिर से गजब की परफॉर्मेंस के चलते बहुत ज्यादा तारीफ पा गई. फिल्म का नाम था जूल थीव. हालांकि फिल्म के लीड रोल में अगेन वैजयंती माला थी, सेकंड लीड में थी तनुजा. लेकिन इस फिल्म के लिए तनुजा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, अभी अवार्ड नहीं मिला. 68 में फिर एक बार धर्मेंद्र साहब के साथ ही आई. फिल्म का नाम था इज्जत, और इसका एक गाना तो बड़ा हिट हुआ. और मुझे लगता है कि जितने भी लोग संसार में हैं और वो जो हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं उनका ये गाना फेवरेट होगा ही, या उस लिस्ट में तो होगा ही. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, है, है ना?
4: ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें.
3: इस फिल्म में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फिल्म की दूसरी हीरोइन का नाम लेने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार और सीएम रह चुकी हैं. हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब तमिलनाडु का दूसरा नाम था जयललिता. जी हाँ, यही थी इस फिल्म की दूसरी हीरोइन. और इस फिल्म में वो जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि एक गाना महमूद साहब पर पिक्चराइज किया गया है जिसमें वो कपड़े तो साधु के पहनते हैं लेकिन गाना कुछ इस तरह गाते हैं कि हो कह गए फादर इब्राहिम,
5: कह गए फादर इब्राहिम, वो कह गए फादर इब्राहिम.
3: तो 69 यानी अगले ही साल तनुजा जी को वो फिल्म मिल गई जिसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन तो मिला ही, साथ ही अवार्ड भी मिला. फिल्म में इनके साथ बिस्वजीत थे, और इस फिल्म का एक गाना तो बड़ा मस्त है जो तनुजा पर ही फिल्माया गया है. कौन सा? ये वाला.

सिंगापुर। अभी ब्रेक टाइम है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, म्यूजिकल ब्रेक है वैसे तो, बहुत मजा आएगा आपको उसमें, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिल्म हाथी मेरे साथी की। सो यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मैसेज 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। हम बात करने वाले थे फिल्म हाथी मेरे साथी की ब्रेक पर जाने से पहले, जो 1971 में आई थी। लेकिन इस फिल्म की बात करने से पहले हम बात करेंगे फिल्म प्यार की कहानी की। ये फिल्म भी इसी साल 1971 में आई थी। इसमें अमिताभ बच्चन साहब थे लीड रोल में और साथ में उनकी हीरोइन कौन थी? हमारी आज की लेजेंड तनुजा। लेकिन इस फिल्म में तनुजा के ऑपोजिट जितेंद्र होने वाले थे पहले, लेकिन उस टाइम का एक रूल था कि एक हीरो साल में 6 लीड हीरो वाली फिल्म ही कर सकता है, और जितेंद्र ऑलरेडी वो सब फिल्में कर चुके थे। तो फिर इस तरह अमिताभ बच्चन साहब को इस फिल्म का हीरो बनाया गया। हालांकि ये फिल्म उस साल की सबसे बुरी फिल्मों में से एक थी, लेकिन इसकी भरपाई तनुजा ने इसी साल कर ली हाथी मेरे साथी से। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की स्टोरी लिखी थी सलीम जावेद साहब ने, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और आनंद बख्शी के बोल थे। हर तरह से ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई।

इसमें इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना थे और बाद में फिर तनुजा ने काफी सारी फिल्में राजेश खन्ना साहब के साथ की, जैसा कि नाम से पता चलता है हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में राजेश खन्ना जानवरों को पालते हैं और बहुत ही कमाल का काम किया उन सबने। जिस तरीके से जानवरों के साथ बिहेव किया है फिल्म में वो वाकई काबिले तारीफ है और साथ में फिल्म के डायरेक्टर भी काबिले तारीफ है। एम ए थिरुमुगन ये उनकी फिल्म थी जिन्होंने इतना अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट किया। आप देखेंगे इस फिल्म को तो आपको लगेगा कि हर कोई बना नहीं पाता इस तरह की फिल्म। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काम था उस जमाने में। इस फिल्म के कुछ दिनों के बाद एक सर्कस में तनुजा को एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। एक्चुअली वो सारे जानवर एक सर्कस से लाए गए थे जो इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे, जिन पर ये सारे सीन्स शूट किए गए थे। तो जब तनुजा अपनी 2 साल की बेटी काजोल को लेकर गई तो वहां जितने भी हाथी थे वो तनुजा को देखकर एक्साइटेड हो गए। फिर जब तनुजा उनके सामने गई तो अपनी ट्रंक से अपनी सूंड से तनुजा के कंधे पर सर रख दिया और तनुजा ने जब उन्हें सहलाया तब जाकर वो शांत हुए। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि हम आपको मिस कर रहे थे। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है सिंगापुर। हाथियों की जो मेमोरी होती है बहुत कमाल की होती है, एलिफेंट मेमोरी इसलिए बोलते हैं, जिसे बहुत कुछ याद रह जाता है। आपने भी ऐसा पहली बार सुना होगा शायद, लेकिन ये हकीकत थी। वैसे भी सुनते हैं ये गाना और फिर मिलते हैं आपसे। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर तनुजा की कहानी जारी है, समर की जुबानी।

हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। मेरे यानी समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। फिर से आज हम बात कर रहे हैं तनुजा जी की। 1971 में हाथी मेरे साथ इनकी फिल्म आई और ये कमाल की हिट रही। इसका जिक्र मैंने किया था इस ब्रेक से पहले। इसी के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसमें इनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ की गई और वो फिल्म थी अनुभव। बासु चटर्जी का डायरेक्शन था और इसमें इनके साथ संजीव कुमार साहब थे। बासु चटर्जी ने इस फिल्म के बाद दो सीक्वल और बनाए थे इसी के, जिनमें से एक ने फिर नेशनल अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म में पति पत्नी के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को।

तनुजा जी ने जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ बहुत काम किया साहब, और सबको भी इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता था। और तपन सिन्हा इनके फेवरेट डायरेक्टर थे। लीड हीरोइन के बाद इन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किए या कैरेक्टर रोल भी करने शुरू कर दिए थे, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ याराना में ये उनकी भाभी बनी। इसके अलावा राज कपूर साहब की प्रेम रोग में भी इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें इनके अपने पति के साथ कुछ डायलॉग्स हैं। सीन कुछ ऐसा था कि फिल्म में जो बहू है उसका रोल पद्मिनी कोल्हापुरी ने किया था, उसका रेप हो जाता है और रेप फिल्म में तनुजा के पति ही करते हैं रजा मुराद। और जब तनुजा को पता चलता है तो उनको गुस्सा भी करना है और समझाना भी है। तो साहब शॉट की रिहर्सल तो हो गई, राज साहब ने कहा शॉट ले लें तनुजा, उन्होंने बोला जी बिल्कुल, तो शॉट लिया गया। इनके डायलॉग्स के बाद ओके बोलना था डायरेक्टर को, लेकिन किसी ने ओके नहीं बोला। तनुजा जी सोच रही थी कि राज साहब ओके क्यों नहीं बोल रहे हैं। हुआ यूं कि तनुजा जी ने वो सीन इतना रियल किया था कि सब खो गए उस सीन में और सब रोने लग गए। राज साहब भी उनमें से एक थे। और फिर किसी और ने राज साहब को टटोला और फिर कहा कि शॉट ओके बोलिए, तो इतनी रियलिस्टिक एक्टर बन गई तनुजा। कभी मौका मिले तो आप ये सीन नहीं देख लीजिएगा प्रेम रोग का, वैसे तो फिल्म भी बहुत कमाल की है। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं कुछ और गाने, और गानों के बाद होगी आपसे आखिरी मुलाकात। आएंगे ना मिलने, तनुजा की कहानी अभी जारी है समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। मिलते हैं इन गानों के बाद, स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव और लेजेंड्स फिर से की आज आखिरी मुलाकात, आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के शो के बारे में आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर। तनुजा मुखर्जी की हम आज बात कर रहे हैं। तनुजा लिंग्विस्टिक लेडी है, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं भाई साहब। इन्हें फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, जर्मन आती है, बंगाली, मराठी, मतलब बहुत सारी भाषाएं, हिंदी तो आती है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड वुमन फ्रॉम बर्थ। एक बहुत ही खूबसूरत सफर इनका रहा है अब तक का, और अभी भी ये कई फिल्मों में काम कर रही हैं। 2012 में इनके दामाद सुपरस्टार अजय देवगन की एक फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार, उसमें भी ये नजर आई थी। इसके अलावा भी ये बंगाली और मराठी फिल्में करती रहती हैं। हालांकि अपने करियर में कुछ फिल्में इन्होंने छोड़ी हैं, जिसमें से ये उन फिल्मों को अगर करती तो बहुत ही अच्छे किरदार और भी ये कर पाती, जैसे देवानंद साहब की हरे रामा हरे कृष्णा। उसमें जीनत अमान ने जो रोल प्ले किया था वो पहले तनुजा को ही करना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि मैं सिस्टर का रोल प्ले नहीं करूंगी आपकी, मैं तो सिर्फ लीड रोल ही प्ले करूंगी अब, क्योंकि तब तक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी वो। तनुजा ने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से कलर फिल्मों के जमाने तक काम किया, और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के स्टारडम के साथ काजोल के स्टारडम को भी देखा है। हम चाहते हैं कि तनुजा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ऐसे ही और एंटरटेन करती रहे। और फिलहाल मैं एक फिल्म का और जिक्र करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा, वो है साथिया। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी दमदार एक्टिंग से ये बता दिया था कि एक दमदार एक्टर क्या होता है। बहुत कमाल का काम किया है तनुजा ने, इसमें रानी मुखर्जी की मदर बनी हो। चलिए अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं आपसे जरूर मिलूंगा किसी एक और शख्सियत की कहानी लेकर। आप सुनते रहिएगा तब तक रेडियो मसी 24/7 लाइव, और जाते जाते कुछ वादे कर दीजिए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद तो मुझे भी रखिएगा आप। हाँ, मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो आपके

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है। मुझे जान पे ले चलो। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो। रात अकेली है।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: हैप्पी बर्थडे, वो भी 10th वाला। तो फिर चलो गिफ्ट लाओ।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क थैंक्स यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एज वी सेलिब्रेट 17 इयर्स सिंस आवर इंसेप्शन एंड 10 इयर्स ऑफ 24/7 ब्रॉडकास्टिंग एज सिंगापुर्स ओनली लाइव इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वी हैव ओनली गॉट बिगर। डाउनलोड द मस्ती मीडिया 24/7 ऐप टुडे। सेम मस्ती, बिगर यूनिवर्स।
2: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है। जोश में रहो।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: आज हैप्पी बर्थडे, वो भी 10th वाला, तो फिर चलो गिफ्ट लाओ। मस्ती मीडिया नेटवर्क थैंक्स यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एज वी सेलिब्रेट 17 इयर्स सिंस आवर इंसेप्शन एंड 10 इयर्स ऑफ 24/7 ब्रॉडकास्टिंग एज सिंगापुर'स ओनली लाइव इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वी हैव ओनली गॉट बिगर। डाउनलोड द मस्ती मीडिया 24/7 ऐप टुडे। सेम मस्ती, बिगर यूनिवर्स।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश।

0: में 10 हुआ है मतलब 10 साल हो गए।
1: Congratulations and celebration.
2: Musti Media Network thanks you for your continued love and support as we celebrate 17 years since our inception and 10 years of 24/7 broadcasting as Singapore's only live Indian media platform. And we have only got bigger. Download the Musti Media 24/7 app today. Same Musti, bigger universe.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से तीन मिसरे।

एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and His name is the truth.

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

नहीं पड़ी थी। डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। और आपको पता है आज से करीबन 8 साल पहले जब मेरा पहला शो था ना, तब मैंने आपसे यही लाइन सेम टू सेम बोली थी इन माय वेरी फर्स्ट ऑडियो कि आज सुबह मुझे आपसे बातें करने के लिए अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ जी, नॉस्टैल्जिक इसलिए हिट कर रहा है बिकॉज आज हमारे नेटवर्क ने 17 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस लाइव 24/7 रेडियो स्टेशन ने 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अगर मेरी बात करेंगे आप तो मुझे अप्रॉक्स 8 इयर्स हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बातें करते हुए। सो नॉस्टैल्जिक हिट करना बनता है बॉस। एंड बहुत सारे सरप्राइजेस आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के इंतजार कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। सुबह सुबह उठ जाओ, जाग जाओ, रेडियो मस्ती आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाला है। बिल्कुल, हमारी एनिवर्सरी आपकी वजह से और ज्यादा खास बन चुकी है। डोंट गो एनीवेयर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
0: भाई, आने वाली दिवाली के लिए आपकी मे बी अलग कुछ प्रिपरेशन चल रही होगी, राइट? लेकिन उस प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्लैमर इंडस्ट्री में भी एक प्रिपरेशन चल रही है. क्या? कि रामायण मूवी जिसका बजट ही मोर देन 400 करोड़ है, वो रिलीज होने वाली है. तो वो कैसी होगी, क्या होगी, लोगों को इम्प्रेस करेगी या नहीं करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसी बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इस मूवी की एक्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उम्मीद लगा रही है. हाँ जी, साई पल्लवी जो कि साउथ की एक स्टार है एंड रामायण मूवी से बॉलीवुड मूवी में वो एक एंट्री करने वाली है. तो इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उनकी लाइफ का एक बेंचमार्क प्रोजेक्ट हो और इस तरीके से वो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा जो है ना वो ज्यादा मतलब लोगों को पसंद आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स सी, ये चीजें प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल हैं जितनी सोची जा रही है या फिर बस चल रहा है. हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर भी बहुत कुछ चल रहा है, अमेजिंगली चल रहा है एंड आपका कर रहा है वो इंतजार. बैक टू बैक गाने एंड बैक टू बैक बातें.
2: We are Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
3: Kinniya galla ve tu karda hai, iniya miniya galla te tu ladda hai.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान,
2: जोश में रहो।
3: क्या बात है, ये वो बात है जिसको सुनने के बाद शायद हमारा जवाब कभी भी ना नहीं होगा, बिकॉज सिंगापुर में रहते रहते हमने ये चीज तो डेफिनेटली सीखी है कि खुद की ना सही दूसरों की मदद जरूर करना। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आ चुकी हूं ऊपर द साइड। एंड डेफिनेटली कुछ वक्त पहले नेपाल में फ्लड आने की वजह से बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बातें शायद सिंगापुर की भीड़ में हम एक बार भूल सकते हैं, लेकिन जिनके साथ ये हुआ है उन तक एक मदद पहुंच जाए तो शायद हमारा काम हो जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई सिंगापुर में शुरू हो चुका है नेपाल फ्लड रिलीफ फंड कैंप। एंड डेफिनेटली आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा हो या बड़ा हो, डेफिनेटली वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, राइट? टिल 3 अक्टूबर तक पहुंचा सकते हैं 10 AM to 8 PM डेली, एंट्रेंस ऑफ लिटिल इंडिया आर्क गेट, 48 सरवान गुंड रोड, सिंगापुर। मैं आरजे अनुप्रा आपके साथ। डिटेल के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 9166410 पर। मस्ती मॉर्निंग शो।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: यू नो व्हाट, हमारी ऑफिस मीटिंग में आज से कुछ साल पहले एक ऐसा डिस्कशन हुआ था जिसके बाद मुझे यहाँ रेडियो मस्ती में कभी मंडे ब्लूज फील नहीं हुए यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ, एंड डेफिनेटली हम यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे नेटवर्क को 17 ईयर्स हो चुके हैं एंड रेडियो मस्ती को 10 साल हो चुके हैं यार। बात हुई एक बार मेरी बॉस से, रेणुका से, कि यार मंडे को मन नहीं करता है ऑफिस आने का। तो पूछा गया क्यों नहीं होता, तो मैंने कहा सुबह उठने के साथ रेडी हो, ये करो वो करो, फिर ऑफिस आओ, ऐसा करो वैसा करो। कहते ठीक है, मंडे को तुम्हें ऐसे ऑफिस आना है नुपुर कि जैसे तुम अपने घर ही आ रही हो। मतलब कोई भी लुक हो सकता है, कैसे भी हेयर्स हो सकते हैं, कैसी भी हालत में तुम ऑफिस आ सकती हो, बस ऑफिस आकर चिल होकर आराम से शो करके जाओ। मैंने कहा वाह, ये तो कोई मंडे ब्लूज वाला फील ही नहीं है। हाँ, और टाइम को लेकर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कि मंडे तो काउंट ही नहीं होगा यार। भाई ऐसी ऐसी मोटिवेशंस जो है ना वो आपकी तरफ हमें खींचे ले आती है। एंड कभी भी यहाँ रेडियो पर इस बार बैठ के बात करना काम लगा ही नहीं हमें यार। हाँ, तो ये साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। खैर, निकलते निकलते अगर हम इंडिया की वायरल रील्स तक पहुंचे तो बेंगलुरु, जो कि वन ऑफ द हेक्टिक सिटी कही जाती है इंडिया की, वहां से ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि लोग अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नीचे अपनी जो पार्किंग होती है ना, वहां पर भी 30-30 मिनट्स का ट्रैफिक जैम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ही इतने हैं रहने वाले। हाँ, खैर चलते चलते लोगों की, बॉलीवुड की, आपकी और मेरी सबकी बातें होगी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने रहें, बिकॉज शाम को हम सभी आरजेज आपके लिए सरप्राइज शो भी ला रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैप्पी बर्थडे, वो भी 10th वाला। तो फिर चलो गिफ्ट लाओ। मस्ती मीडिया नेटवर्क थैंक्स यू फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एज वी सेलिब्रेट 17 इयर्स सिंस आवर इंसेप्शन एंड 10 इयर्स ऑफ 24/7 ब्रॉडकास्टिंग एज सिंगापुर'स ओनली लाइव इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वी हैव ओनली गॉट बिगर। डाउनलोड द मस्ती मीडिया 24/7 ऐप टुडे। सेम मस्ती, बिगर यूनिवर्स।
1: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
2: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।